उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे।

दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

0: हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर. द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान. ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

Well, today it's Friday, 24th of July, 2026. अब से लेकर ठीक काफी देर तक मेरा आपके साथ रहने वाला है. Ladies and gentlemen, आज के हवाले से, आज की वेदर के हवाले से बात करें तो अभी आते हुए बड़ा ही मौसम खुशगवार था जी, और बड़ा अच्छा लगा मुझे ड्राइव करते हुए आज पहुंचते हुए यहाँ पे, क्योंकि नॉर्मली ऐसा मौसम नहीं मिला करता. पिछले हफ्ते बहुत गर्मी थी, अब जो है वो मौसम बहुत अच्छा है एंड होपफुली अच्छा ही रहे. लेकिन जो थोड़ी सी मुश्किलात देखने को मिल रही हैं हमें, थोड़े से सैलाब के जो खदशात हैं, जो खतरात हैं, या जहाँ जहाँ भी मौजूद है इस वक्त जो देखा जा रहा है, बस हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला आसानियाँ करे सबके लिए और किसी को कोई जानी या माली नुकसान ना हो. एक अच्छी दुआ की जा सकती है. बहरहाल जी, प्रोग्राम है आप सबका गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एंड डेफिनेटली हम प्ले करेंगे आपके लिए कुछ मिक्स सम म्यूजिक एंड आप सुनेंगे, आप इंजॉय करेंगे. आज छुट्टी बिल्कुल नहीं है, आप लोगों ने ऑफिस जाना है, सो मैं अच्छा अच्छा म्यूजिक आपके लिए प्ले करने वाला हूं ताकि आप सुने और इंजॉय करें. सो हियर वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन, द फर्स्ट ट्रैक ऑफ द शो इज

0: cool stuff. Extra fast, extra cool, extraordinary.
1: ओकाफ में एक शहजादा रहा करता था
2: पर उसका सबसे बड़ा मसला था किसी दोस्त का ना हो।

बैक जी, वेलकम बैक वंस अगेन। 8:26 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं फोन ना, बल्ले बल्ले वाला सॉन्ग हमने प्ले कर दिया। बहुत सारे घरों में जो है तो ये शहनाइयां भी चल रही हैं जी, कुछ रिश्ते हो रहे हैं मोहब्बतों के। कोई तैयारियां कर रहा है आपको लेके जाने की।

0: Alright जी, welcome back once again. 8:34 मिनट हुए चाहते हैं, बल्कि 35 मिनट होने वाले हैं और आप सुन रहे हैं FM 101. मुझे कहते हैं साहिल. वेल जनाब, वेदर के हवाले से बात हो रही थी कि मौसम बड़ा खुशगवार हो चुका है. वो लोग जो कि ज़रा घूमने फिरने के शौकीन हैं और कहीं अच्छी जगह जाना चाहते हैं, तो आपके लिए पास आपके पास जो है बहुत सारे अच्छे ऑप्शन जो हैं वो आपके करीब हैं, अपने घर के करीब जो पार्क्स हैं वहाँ में भी शाम में जा सकते हैं, क्योंकि मौसम जो है वो इस हद तक खुशगवार है. वो लोग जो कि वाटरफॉल वगैरह के थोड़े से शौकीन हैं, उनको बता दें कि अम्ब्रेला वाटरफॉल जाने के लिए जो रास्ता है वो क्लियर तो है, लेकिन ऐसे हालात में जब बारिशें बहुत ज़्यादा हों तो ऐसे हालात में आप जाने से जो है वो परहेज़ करें, इश्तना भी करें तो बेहतर होगा. क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, बारिशें हैं, थोड़ा सा लैंडस्लाइडिंग और चीज़ें भी हो जाया करती हैं, जिसकी वजह से फिर आपको परेशानी का बाइस बनती है आपके लिए, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए. बहरहाल जी, अगर आपका प्रोग्राम कोई अच्छी सी मूवी देखने का है तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं. बहुत अच्छी अच्छी मूवीज लगी हुई हैं. प्यारे प्यारे बच्चों के लिए टॉय स्टोरी 5 जो है वो आ चुकी है, लेकिन वो टॉय स्टोरी 5 जो है वो कंजेक्यूटिव शोज नहीं हो रहे उसके, तो वो आपको ऑनलाइन चेक करके जाना पड़ेगा कि बच्चों को अगर दिखाना है तो वो दोपहर के आई थिंक शोज हैं, 2-3-4 बजे वाले ये वाले शोज होते हैं जो कि लगते हैं. आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के सिनेमाज में ये मूवी जो है वो मौजूद है. बच्चों को ज़रूर दिखाएगा, क्योंकि टॉय स्टोरी एक सीरीज है पूरी जो कि 1, 2, 3, 4 तक हम देख चुके हैं. हम 5 का इंतज़ार था. पिछले संडे प्रोग्राम कुछ था हमारा कि हम देख लेंगे, लेकिन कुछ बिजी रूटीन की वजह से बच्चों को नहीं ले जा सके, तो इंशाल्लाह इस वीकेंड पे जो है वो टॉय स्टोरी 5 जो है वो देखने का मूड है. आप भी जरूर बताइएगा कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहेंगे इस वीकेंड पे. ओके जी, मैं लेके चलूंगा आपको फेसबुक पे. मैंने तस्वीर तो भेज दी थी मोहतरम जनाब वसीम साहब को. लेमी चेक कि वसीम ने मेरी पोस्ट जो है वो लगाई है कि नहीं लगाई है. देख लेते हैं. और जी, पोस्ट मौजूद है, आप इस पोस्ट पर जो है वो अपने मैसेजेस कर सकते हैं. यार क्या लग रहा हूँ उस तस्वीर में है मैं. मिसेस सईद मलिक ने हमें ज्वाइन किया है और बहुत सारे फ्लावर्स भेजे हैं. बहुत शुक्रिया मिसेस सईद मलिक, इनकी खुशबू बहुत अच्छी है. साथ कहती हैं शानदार पोस्ट, कहती हैं सदा सलामत रहो, आमीन. बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, आ गया मेरा बच्चा. जी मैं आ चुका हूं मिसेस सईद मलिक, कैसी आप, ठीक हैं. माज अली ने हमें ज्वाइन किया है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं. मैं हूं माज अली पेशावर से. बहुत शुक्रिया, थैंक यू, ऑल द वे फ्रॉम पेशावर. पेशावर के प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम. मैंने सुना अभी बड़ी बारिशें हो रही है वहां पे हैं, बताइएगा. मोहम्मद हफीज बक्कर हमारे साथ है, हफीज उर रहमान भक्कर, ईदगाह जनूबी भक्कर से. मोहम्मद हफीज उर रहमान, हबीब मलिक, खलील मलिक अली रहमान मुल्तान से, गुल यासीन नाज, और कहते हैं वेलकम टू द शो. बहुत शुक्रिया, थैंक यू. नेक्स्ट हमारे साथ हैं जी अकबर खान फ्रॉम कराची, कहते हैं नंबर वन शो, बहुत शुक्रिया. कहते हैं सलाम अलैकुम, सुबह बखैर पाकिस्तान, कराची से आपका ताल्लुक है, तमाम खूबसूरत सलामत समातों को मेरा सलाम. बहुत शुक्रिया, थैंक यू. नेक्स्ट वी हैव हुमैरा फयाज और हुमैरा.
1: दिस इज एफएम 101, दिस इज एफएम 101, दिस इज एफएम 101.

0: Hi, this is FM 101.
1: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
2: क्या आप घर बैठे फ्रीलांसिंग की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं? तो इंतजार कैसा? हुकूमत पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑनलाइन तरबियत फराहम करने वाला इदारा डिजिस्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम वजारत आईटी और टेलीकॉम की जानिब से इग्नाइट और वीयू के ज़ेर एहतमाम पेश कर रहा है। मुफ्त ऑनलाइन डिजिटल कोर्सेज, लीगल, फुल स्टैक डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, शॉपिफाई डेवलपमेंट और दीगर 24 कोर्सेज में दाखिलों का आगाज। तफसीलात और रजिस्ट्रेशन के लिए www.digiskills.pk विजिट करें या 0304111570 पर राब्ता करें।
3: This is FM 101.
4: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar.
2: Mission ke liye www.digiskills.pk visit karein ya 0304111570 par rabta karein.
3: This is FM 101.

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: खवातीन हजरात, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कलाकार किसी को खो के लिखते हैं और जो गा नहीं सकते वो सुन के रो लेते हैं। तो आप सबकी खिदमत में पेश है किसी की गुजारिश, किसी की इल्तिजा, किसी की शिकायत। जरा तवज्जो फरमाएं।

0: अगर रास्तों में कहीं तुम रस्मन ही पूछ लेना मुझसे हाल मेरा, मैं मुस्कुरा कर गम छुपा कर ही जवाब दूंगा, मैं यही करता आया हूँ, यह है कमाल मेरा।
1: I love FM 101.

झूठी लोग लूट लेते अपने ही यहाँ। सर उठा के चल मगर कदम भी देख कर उठा, दुनिया बढ़ गई है सही और गलत की जंग में। मैं ना सही ना मैं गलत, मेरा

0: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। अयाज असलम से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। सदर ममलुकत ने बलूचिस्तान में तरक्की का अमल मजीद तेज करने की जरूरत पर जोर दिया है। नायब वज़ीर आज़म आज किर्गिस्तान में शंघाई तआवुन तंजीम की वज़राए खारजा काउंसिल के इजलास में शिरकत कर रहे हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि जम्मू कश्मीर ना तो भारत का नाम नहाद अटूट अंग है और ना ये उसका अंदरूनी मामला। और पाकिस्तान समेत 8 अरब और इस्लामी ममालिक ने मस्जिद अक्सा के अहाते में इसराइली आबादकारों की जानिब से दरअंदाजी की शदीद मजम्मत की है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: This is FM 101.
4: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
5: सुनते रहिए FM 101 101।

0: सपहर के 3 बजे हैं। समरा यूसुफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। सदर ने बलूचिस्तान में तरक्की की रफ्तार मजीद तेज करने की जरूरत पर जोर दिया है। नायब वजीर आजम ने जमहूरिया किर्गिज के शहर चोलपान आता में चीन के वजीर खारजा से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और कसीर जहती फोरम्स में तआवुन पर तबादला ख्याल किया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजीर ने रिवायती सनतों पर जोर दिया है कि वो माशी तरक्की के लिए खुद का निज़ाम को अपनाएं। वजीर पेट्रोलियम ने तवानाई की फाल पैदावार बढ़ाने और गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग के लिए हुकूमत के भरपूर तआवुन की यकीन दहानी कराई है। पाकिस्तान ने एक बार फिर दो टोक अल्फाज में कहा है कि जम्मू कश्मीर ना तो भारत का नाम निहाद अटूट अंग है और ना ही उसका दाखली मामला है। पाकिस्तान और श्रीलंका की खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 एक रोजा बैन अक्वामी मैचों के सिलसिले का दूसरा मैच कल हेमेंटोटा में खेला जाएगा। और अब खबरों की तफसील। सदर आसिफ अली जरदारी ने बलूचिस्तान में तरक्की का अमल मजीद तेज करने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने ये बात कराची में बलूचिस्तान के वज़रा से मुलाकात के दौरान कही। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की, अमन व अमान की बेहतरी, अवामी फलाह बहबूद और सूबे में माशी सरगर्मियों के फरोग के लिए तमाम मुतलिका इदारे बाहमी तआवुन और मौसर राबते के साथ काम करें। सदर ने कहा कि बलूचिस्तान के अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी और सूबे की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। नायब वजीर आजम मोहम्मद इसहाक डार ने जमहूरिया किर्गिज के शहर चोलपान आता में शंघाई तआवुन तंजीम की वज़रा खारजा काउंसिल के इजलास के मौके पर चीन के वजीर खारजा वांग जी से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन दोतरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और कसीर जहती फोरम्स में तआवुन पर खुशगवार और मुफीद तबादला ख्याल किया। नायब वजीर आजम ने शंघाई तआवुन तंजीम की वज़रा खारजा काउंसिल के इजलास में अपने खिताब के दौरान इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की तारीफ करने पर वजीर खारजा वांग जी का शुक्रिया अदा किया। चीनी वजीर खारजा ने शंघाई तआवुन तंजीम की सरबराहाने ममलिकत काउंसिल की आइंदा सदारत संभालने और अगले साल तंजीम के सरबराह इजलास की मेजबानी के हवाले से पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

तू मुझसे इतना दूर है, अब कर लिया कबूल है। अंदर से तू भी जानती तेरे तेरे होने को है, पर तू जाने में मजबूर हूँ, मैं तेरा मशकूर हूँ। तू समझे मुझे अभी, तू जैसे कोई नूर है। कोई नूर है तू, एक फितूर है तू, इतने फासले पर फिर भी कुछ सुकून सा है तू।

0: शाम के 5 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। समरा यूसुफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने तमाम सूबों की मुसावी तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत के पुख्ता अज़्म का इजहार किया है। नायब वज़ीर आज़म ने शंघाई स्पिरिट के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 मैचों की सीरीज का पहला क्रिकेट टेस्ट कल से तरोबा में खेला जाएगा। महकमे मौसमियात ने कल से पीर तक मुल्क के जनूबी और वस्ती हिस्सों में वसी पैमाने पर बारिश की पेशगोई की है।
1: क्या आप घर बैठे फ्रीलांसिंग की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं? तो इंतजार कैसा? हुकूमत पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑनलाइन तरबियत फराहम करने वाला इदारा डिजी स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम वजारत आईटी और टेलीकॉम की जानिब से इग्नाइट और वीजू के ज़ेरे एहतमाम पेश कर रहा है। मुफ्त ऑनलाइन डिजिटल कोर्सेज, लीगल, फुल स्टैक डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, शॉपिफाई डेवलपमेंट और दीगर 24 कोर्सेज में दाखिलों का आगाज। तफसीलात और रजिस्ट्रेशन के लिए www.digiskills.pk विजिट करें या 03304111570 पर राब्ता करें।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: दर्द से भरी मेरी ये कहानी है ना, बात करनी ना तुझको सुनानी, सोचो क्या

मधक सा गया और चुप हो गया, मधक सा गया और चुप हो गया, मधक सा गया और चुप हो गया, मधक सा।

से जाने लोग कैसे मतलब से बात करें तन्हा रात और याद तेरी इस कश्मकश में चाहे दिन या शाम पूरी कायनात हो लिखूं तेरी सदाएं पढ़ूं सारी दुआएं फिर भी तू राज ना आए हम तेरे खास सताए माना हम मर ना पाए जी के भी कर ना पाए तेरी मोहब्बत की जो कीमत थी वो भर

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: दर्द से भरी मेरी ये कहानी है, ना बात करनी ना तुझको सुनानी।

धक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं धक सा गया हूँ और चुप हो गया, मैं धक सा गया हूँ और चुप हो गया।

0: रात के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने आज रावलपिंडी में स्काई 47 कराकुरम वन डेटा सेंटर का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने शंघाई तआवुन तंजीम के रुकन ममालिक के दरमियान राब्तों और मुश्तरका तरक्की के फरोग के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांग में भारतीय हिमायती याफ्ता फितना उल ख्वारिज से ताल्लुक रखने वाले 12 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया है। पाकिस्तान और श्रीलंका की खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का दूसरा एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैच कल हम्बनटोटा में खेला जाएगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: उम्मीद भी आपने रखनी है और बाहर भी आपने रखनी है,
1: ठीक हो गया।
0: तो वो उस उम्मीद पे है, उम्मीद पे कहते हैं ना दुनिया कायम है,
1: बिल्कुल।
0: और वैसे उम्मीद छोड़नी भी नहीं चाहिए,
1: उम्मीद नहीं छोड़नी,
0: उम्मीद बड़ी खूबसूरत चीज है,
1: उम्मीद का दामन थाम लेना चाहिए। हाँ। और जिंदगी यूं ही गुजर जाती है।
0: अरे वाह, अरे वाह। और अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए ना,
1: बिल्कुल अच्छे की रखेंगे तो अच्छा होगा ना।
0: अच्छा, ये बड़ी एक मजे की चीज आपने बताई और अच्छी बात कही है। व्हाट आई पर्सनली फील ऑलवेज, आप जो सोचते हैं ना आपकी लाइफ वैसे होती रहती है,
1: बिल्कुल।
0: आप जिस पैरामीटर्स के साथ, जिन सोचों के साथ, जिन ख्यालों के साथ आप बंध जाते हैं ना, आपकी लाइफ भी उस तरह ही बंधी रहती है,
1: बिल्कुल ऐसी।
0: इफ़ यू वांट टू प्रोग्रेस योर लाइफ, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं,
1: आगे बढ़ना चाहते हैं
0: या फिर आप पॉजिटिव रहते हैं एंड यू वॉन्ट टू डिलीवर, डिलीवर इन अ सेंस कि आप सोसाइटी को कुछ देना चाहते हैं,
1: बिल्कुल।
0: आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो अपने लिए करना ना, बुनियादी चीज है कि पहले अपने आप को,
1: पहले खुद को प्रोग्रेस अपनी करनी है,
0: अपने बारे में स्टेबल करना है, अपने आप को बेहतर करना है, अपने आप को प्रोग्रेस करना है, फिर वो मौका आएगा कि आप दूसरों के लिए भी कुछ कर सकेंगे,
1: बिल्कुल।
0: तो अगर आप खुद स्टेबल नहीं, मुझे आपकी कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी लगी एंड आई वुड लव टू शेयर विद माय ऑडियंस, सुनने वालों से, कि कहते हैं ना कि कुछ सबक आप कहीं से भी लें ना, वो आपको अपने पल्ले बांध लेना चाहिए,
1: बिल्कुल।
0: चाहे वो कहीं से भी मिले, चाहे आपसे भी मिल जाए,
1: चाहे तेरे को भी मिल जाए। हाँ। ये कहना चाह रहे हैं ना आप?
0: सर, ये देखें, जो सबक होता है या कोई इल्म होता है या नॉलेज होता है या विजडम होता है या किसी का एक्सपीरियंस होता है, किसी का एक्सपोजर होता है, किसी की लाइफ की तजर्बात मुशाहदे होते हैं, ये किसी की मिरास नहीं है और इसमें एज फैक्टर मैटर नहीं करता,
1: बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चा भी आपको बता सकता है।
0: अब देखें, इस बच्चे ने मुझे बताया ना,
1: जी हाँ,
0: वो बच्चे की बात मुझे याद
1: है, हम बचपन में आपको सुना करते थे।
0: इतना ना करें, इतने पर मेरे सामने मेरे शो दे बैग बच। अच्छा, वो अक्सर वो सेलेब्रिटीज़ भी होते हैं ना, उनको कहते थे हम तो आपको बचपन से देख रहे हो, माइंड कर जाते हैं।
1: हाँ साहब, आपने बिल्कुल माइंड नहीं करना, मैं आपको बचपन से सुन रहा हूँ।
0: शुक्रिया।
1: और आप इतना खूबसूरत बोलते थे, इतना खूबसूरत बोलते थे कि मैं रेडियो बंद कर देता था, मैं कहता था इतनी खूबसूरत आवाज़ सुनने का मैं हकदार नहीं
0: हूँ, हकदार नहीं हूँ। यानी आप अपना बता रहे थे कि मेरे कान इस काबिल नहीं कि मैं इतना सुरीला सुन सकूं।
1: बिल्कुल हाँ साहब, बाकी आपको मैं काफी सुनता रहा हूँ और बड़ा जबरदस्त
0: बचपन की बात है,
1: बचपन से
0: के बचपन की बात है।
1: नहीं, बचपन अभी आना है और
0: बचपन आना है,
1: आपका आ चुका
0: है। नहीं, मेरा तो बचपन है सर,
1: बचपन है।
0: मैं तो अपने अंदर हमेशा एक बचपन रखता हूं।
1: वैसे इंसान को रखना चाहिए बचपन,
0: मेरे तो हर वक्त
1: एक बचपना रहना चाहिए।
0: हाँ।
1: आपको पता होगा कोई भी फंक्शन वगैरह होता है तो हम बच्चों की तरह डांस नहीं करना शुरू हो जाते।
0: हाँ। नहीं, लेकिन ये है कि बचपना होना चाहिए, हाँ, आपके अंदर एक क्यूट सा बच्चा होना चाहिए, मासूम सा,
1: मेरे जैसा।
0: मेरे ख्याल में हम टॉपिक चेंज कर लेते हैं, अगर आपके जैसा बच्चा था फिर ऐसा बच्चा नहीं चाहिए, इतना सेहतमंद बच्चा,
1: ये बच्चा कुछ है।
0: नहीं यार, इस तरह का बच्चा नहीं, लेकिन बच्चा चाहिए, एक और एक बच्चा होना चाहिए यार, एक कहीं ना कहीं
1: बच्चा एक ही अच्छा,
0: बच्चा एक ही अच्छा, लेकिन पांच के बाद। वो कहते ना यार, मेरे छह बच्चे हैं लेकिन उनमें से एक बच्चा जो है ना वो शानदार है। एक को कहता है मेरे चार बच्चे, यार एक मुंडा मेरा बड़ा अच्छा है, कुड़ी मेरी बड़ी अच्छी है, तो इसी ना बच्चे एक ही अच्छा, पाँच छः सात में से। अच्छा, इरादे ठीक नहीं लग रहे आपके
1: है? नहीं, राधे बहुत नेक है।
0: अच्छा जी, आप अब क्या होता है शो में, आप लोगों को कैसे बताते हैं, कॉल करें?
1: हाँ बिल्कुल, लिसनर्स आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। प्रोग्राम में शामिल होने का तरीका बहुत ही आसान है, अपने मोबाइल की राइट मैसेज ऑप्शन में जाइएगा, 101L लिखेगा, स्पेस दीजिएगा, अपना नाम, अपना पैगाम लिखेगा, भेज दीजिएगा 4471 पे, और आप हमें कॉल कर सकते हैं 4221100101। हमसे रबते का नंबर कॉल कीजिएगा, दिल से कॉल मिलाइएगा, दिल तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, facebook.com/fm101 लाहौर, हमारा ऑफिशियल फैन पेज, आइए उसको ज्वाइन कीजिए, पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, प्रोग्राम का हिस्सा बन जाइए।
0: और जनाब, अली रज़ा ने आपको तरीकाकार बता दिया है कि आप कैसे हमारे साथ रابطے में रह सकते हैं। सर, रابطے में रहना कितना ज़रूरी है,
1: बहुत ज़रूरी
0: है ना, और आप ऐसे लोगों से रابطے में जो जिनसे आप बड़ी देर से आप रابطے में नाराज़ हो। अब तो रابطے में रहना इतना मुश्किल काम तो नहीं है,
1: मुश्किल नहीं है, लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है तो हम रابطہ हमारा सोशल मीडिया पे ही होता है, व्हाट्सएप पे ही हमारा रابطہ होता है। रابطہ कनेक्शन, मिलना जुलना भी बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कनेक्शन में, किसी भी ताल्लुक में, रابطے में। आप किसी भी अपने दोस्त को मिलें, उससे बातें करें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। क्या बात है।

0: Alright, and now welcome back to the show. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں سب سننے والوں کو. FM 101 لاہور سے میں ہوں فرحان خان, اور انٹرنیشنل کی اس خوبصورتی ٹرانسمیشن میں میرے ساتھ ایک میرے بڑے پیارے دوست, میرے کولیگ جو اس ٹائم میرے ساتھ ہیں, پریشان تھوڑے سے نظر آ رہے ہیں.
1: اچھا
0: دیکھیں, بات سنیں, کچھ بچے ہوتے ہیں نا گھر میں, ان کو ڈانٹ پڑتی ہے, بلا وجہ ڈانٹ پڑ جاتی ہے. مہربانی زیدی صاحب, یہ اپنا موبائل ذرا آف کر دیں. یہ کیا ارادہ ہے ان کے بھائی,
1: کیا کہنا چاہتے ہیں
0: ان سے پوچھ لیں. ایک دو
1: اس کو بند کرے نا بھائی, ایسے.
0: ہاں
1: ایسے ہوتا ہے, آج آپ نے سیکھ لیا.
0: ہاں آج سمجھدار ہو گئے نا.
1: اچھا خان صاحب آپ کچھ فرما رہے ہیں.
0: اچھا بچے ہوتے ہیں نا جن کو وہ کہتے ہیں یار ہر وقت منو چڑکائیں پہنتی رہتی ہیں.
1: بالکل
0: کوئی ویلا نہیں کہ کار دے منو چڑکاں, کوئی گل بھی نہیں ہوندے منو میرے چڑکاں پے جاندے, گل بھی کوئی
1: گل گل تے غلطی کسے دی ہوندی ہے, کٹ مینوں پے جاندی,
0: کٹ مینوں پے جاندی. میں چھوٹا نہ کردا. وہ کہتے ہیں گھر میں, ہر گھر میں ایک چھوٹا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں گھر میں وہ چھوٹا جو ہوتا ہے نا ہوتا بڑا کام کا ہے, لیکن وہ اس چھوٹے جو بھی کام ہوگا نا وہ کہیں گے چھوٹے جو باہر سے دہی لے آؤ, چھوٹے جو باہر سے روٹیاں پکڑ کے لے آؤ, چھوٹے خمیری روٹیاں لے آؤ, چھوٹے باہر سے جاؤ جناب جا کے پتی ختم ہو گئی وہ لے کے آؤ. تو زیدی صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک کر کے چھوڑیں گے,
1: ہو جائے گا ہو جائے گا.
0: اچھا وہ جو چھوٹا ہوتا ہے نا سر ہوتا بڑا کام کا ہے,
1: وہ بڑا کام کا ہوتا ہے واقعی,
0: اور وہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اینڈ پہ اس کے دکھ بڑے ہوتے ہیں. یہ دیکھا نا زیدی کہتا ہے میں بھی وہ چھوٹا ہوں جو سارے کام کرتا ہوں.
1: اچھا ہو گیا ٹھیک.
0: اچھا چھوٹے چائے کا کپ لے آؤ ہم دونوں کے لیے.
1: اچھا
0: آپ کو کیا لگتا ہے چھوٹا چائے لائے گا کہ نہیں لائے گا؟
1: یہ بھی مذاق ہے.
0: نہیں ہمارا چھوٹا بہت اچھا ہے.
1: جس پیار سے آپ نے کہا ہے نا وہ بالکل بھی نہیں لائے گا.
0: نہیں سر ہمارا چھوٹا بڑا اچھا ہے ان شاء اللہ. چھوٹے سن رہے ہو نا یار, دو کپ چائے لے آنا اندر, مہمان آئے ہیں. اچھا سر ہوتا یہ ہے کہ زندگی میں نا بہت سی, آپ جب ہم جیسے جیسے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اس زندگی میں بڑے ہر انسان اپنی زندگی میں بے شمار چیلنجز ہوتے ہیں.
1: بالکل
0: کچھ لوگوں کو ناکامیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے, کچھ کو بہت سے دکھوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے, کچھ کو
1: مشکلات
0: کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے,
1: کٹھن مراحل بھی آتے ہیں,
0: کٹھن مراحل بھی آتے ہیں, اور
1: انسان بڑا ڈاؤن ہو جاتا ہے,
0: ڈاؤن ہو جاتا ہے انسان,
1: بڑا مشکل میں پڑ جاتا ہے.
0: مجھے آپ ساتھ دیں میرا, اور کیا ہوتا ہے.
1: ہاں جی سارا کچھ میں ہی دس,
0: کانوں پائن بٹھانا فائدہ کی اگر نہیں دوں.
1: اوکے اوکے.
0: اچھا سر یہ جو لائف ہے نا اٹس ناٹ اے, جیسے کہتے ہیں ایک سیدھی سڑک نہیں ہے, بل کھاتی سڑکیں آ رہی ہیں, آپ کو بے شمار چیلنجز اور بہت سی ایسی چیزیں جو آپ کی زندگی میں آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں. اچھا اس میں نا ہوتا کیا ہے کہ ہر چیز کے نا کچھ فارمولے ہوتے ہیں, جیسا آپ سائنس کے اندر ہوتا ہے نا فارمولے اس کا استعمال کرتے ہیں, یا پھر آپ ویسے کوئی کام ہوتا ہے اس کے لیے آپ. آج ہم لسنر سے پوچھیں گے اور آپ سے بھی پوچھیں کہ زندگی گزارنے کے فارمولیز کیا ہیں. کون سا ایسا فارمولا ہے جس کے تحت ہم زندگی ہمیں گزارنی چاہیے اور آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ فارمولا زندگی میں بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ فارمولا زندگی میں بڑا امپورٹنٹ ہے, دس از ویری امپورٹنٹ, اس کو زندگی میں لازمی ہونا چاہیے. نو فارمولا ان دا سینس کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار بیسیکلی آپ نے لائف کو کیسے کس پیٹرن پہ لے کے جانا ہے, لائف کو کیسے گزارنا ہے, چیلنجز کا کیسے مقابلہ کرنا ہے, اسٹرگل کیسے کرنی ہے, اس اسٹرگل کے اندر جو ہرڈلز آتے ہیں اس ہرڈلس کو کیسے فیس کرنا ہے. لائف از آئی تھنک اٹس اے آرٹ, اس آرٹ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے, اس زندگی کے آرٹ کو سمجھنا کہ اس آرٹ میں آپ نے زندگی کیسے خوبصورت طریقے سے
1: گزارنا ہے,
0: اس ایک آرٹسٹ کی طرح گزارنی ہے.
1: بلکہ میں کہتا ہوتا ہوں اکثر کہ زندگی گزار نہ دیا کریں, زندگی جیا کریں.
0: ارے واہ ارے واہ, کیا کہنے ہیں, بہت خوب بہت خوب,
1: ٹاپک بہت اچھا رکھا آپ نے خان صاحب.
0: تو سر اس کو ہم زندگیوں کو ہم جیئیں گے اور ہم لوگوں سے بھی پوچھیں گے اور فیس بک پہ ہم کوشش کریں گے.
1: بالکل آج فیس بک پہ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, facebook.com/FM101 ہمارا خوبصورت سا پیج ہے, آئیے جوائن کیجیے. پوسٹ اپلوڈ ہو چکی ہے,
0: جی جی
1: ہو چکی ہے, تھمز اپ کریں, کمنٹ کریں, اس کو شیئر کریں, پروگرام کا حصہ بن جائیں.
0: واہ واہ واہ, اور یہ ضرور بتائیں ہمیں کہ زندگی گزارنے کا کچھ فارمولا دیں, کوئی آرٹ بتائیں, کوئی اپنی زندگی ایکسپیرینسز بھی بتا سکتے ہیں, کوئی اپنے لائف کے چیلنجز کو آپ نے کیسے فیس کیا اور کس طرح اس میں سے.
1: خاص طور جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو اس کی تربیت اس کی والدہ اس کے والد کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں, تربیت کا جو عمل ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اسکول جانے سے پہلے ہی. कि बच्चे ये काम करना है ये नहीं करना, इस काम को करने देना है इसको नहीं करने देना,
0: बिल्कुल ठीक है।
1: फिर जब जो बच्चा स्कूल जाता है, अपनी तालीम हासिल करता है और तालीम हासिल करता चला जाता है, उसको ज़िंदगी के नशेब व फराज का आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हो जाता है।
0: बिल्कुल ठीक है।
1: उसको बहुत सारे दुख भी मिलते हैं, बहुत सारे गम भी मिलते हैं, बहुत सारी खुशियाँ भी मिलती हैं, जिस पर वो बड़ा ओवर एक्साइटेड हो जाता है। और जो गम आते हैं हमारे पास, वो हमें अल्लाह के और करीब कर देते हैं।
0: वाह।
1: तो ज़िंदगी गुजारने के बहुत सारे फार्मूले हैं। सबसे पहला फार्मूला है कि खुद को खुश रखना।
0: अरे वाह, अरे वाह।
1: और खुद को कैसे खुश रखना, इस चीज़ को, खुद को खुश रखने के फार्मूले पहले तलाश करने।
0: क्या बात है, क्या खूबसूरत आपने बात की।
1: जैसे कि हम रेडियो करते हैं, रेडियो पे आते हैं, एफएम पे आते हैं, अपने दिल की बातें करते हैं, और जो जो हमारा दिल चाह रहा होता है वो हम यहाँ पे आके बोल के चले जाते हैं, तो ये हम खुद को खुश रख रहे होते हैं।
0: बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत प्यारी बात की है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब मौजूदा दौर के अंदर हम में मेजॉरिटी जो है ना, वो ख़ुद को खुश नहीं रखते। ख़ुद को खुश रखने का मतलब ये है कि आप अपने इर्द गिर्द लोगों को खुश रखेंगे। खुश रखने का मतलब ये है कि आप सोसाइटी को खुश रखेंगे। अगर आप खुद से खुश रहेंगे,
1: बिल्कुल
0: खुद से खुश रहने की कोशिश करेंगे, बेशक नकल ही कर लें, अली रज़ा की कॉपी कर लें,
1: कॉपी कर लें,
0: क्योंकि आप अली रज़ा को जब देखते हैं ना, वो माशाल्लाह ही ऑलवेज लुक सो यू नो सेटिस्फाइड, बड़ा कंफर्टेबल, बड़ा खुश रहने वाला, हसमुख।
1: थैंक यू सो मच।
0: तो जिनको देखें, हर इंसान की ना, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, हर इंसान का ऑरा होता है ना।
1: बिल्कुल।
0: और जब आप उसको देखते हैं तो उसका ऑरा आप में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है।
1: बिल्कुल।
0: उसकी ज़ात exactly. आप में ट्रांसफॉर्म हो रही होती है, उसकी आदत, उसका हंसना, उसका बोलना, उसका सब चीज़ें आपके अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही, आप एनर्जी उससे ले रहे होते हैं, उस शख्स से। तो मैं आपको जब देखता हूँ तो
1: जी जी।
0: मैं आपसे एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट की जो एक ऑरा है ना, अपने अंदर ट्रांसफॉर्म करता हूँ।
1: थैंक यू सो मच। अगर आप वाकई ऐसा करते हैं,
0: मेरा दिल भी बाग बाग हो जाता है, मेरा चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है आपकी हंसी देख के।
1: थैंक यू सो मच खान साहब। वैसे मैं आपको देख के मुस्कुराता हूँ।
0: अंजुमन बहामे सताई शुरू हो गई यहाँ पे। अच्छा नहीं, वही मेरी तारीफ मैंने कहा था थोड़ी देर के बाद करनी है। पहले मैंने आपकी करनी है,
1: आपकी 11 बजे के बाद।
0: प्लान 11 बजे के बाद
1: ठीक है।
0: पहले 11 बजे तक आपकी तारीफ होगी,
1: ठीक है।
0: 11 बजे के बाद फिर आपने कोशिश करनी है कि थोड़ा थोड़ा तड़का लगाते,
1: यानी कि मैं आपको खुश करके घर भेजूं।
0: यार देखें ना, ये भी मजा है ना जिंदगी का।
1: बिल्कुल।
0: आप तारीफ करें, आप
1: तारीफ बहुत जरूरी है जिंदगी में ना,
0: है ना।
1: तारीफ बहुत जरूरी है, तारीफ इतनी ज़रूरी है, अब खुद की भी करनी चाहिए।
0: अच्छा।
1: खुद की भी करनी चाहिए, दोस्तों की भी करनी चाहिए, और स्पेशली अपनी बेगम की करनी चाहिए तारीफ।
0: अपनी बेगम की?
1: अपनी की।
0: अपनी पे बड़ा जोर दिया आपने।
1: हाँ, अपनी बेगम की तारीफ करनी
0: नहीं,
1: चाहिए।
0: अपनी पे बड़ा जोर दिया
1: आपने। यार जोर देना पड़ता है।
0: क्यों, आज से पहले आप नहीं अपनी बेगम?
1: मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं एक आपको एक चीज बता रहा हूँ, एक बात ये बताना चाह रहा हूँ कि घर में खाना बना, कैसा बना, अच्छा बना, नहीं अच्छा बना, आपने खाना तो है ही,
0: उधर वाला लबना नहीं ना,
1: तो तारीफ कर दे।
0: नहीं की थी तो लबना नहीं,
1: तो तारीफ कर दे फिर। चंगा बने।
0: हाँ ठीक है।
1: दोस्तों की तारीफ कर दे कि यार ए तू मशवरा बड़ा कमाल देता है यार, तेरे मशवरे से अमल करके मैं काम किया। देखो वो दोस्त भी खुश हो जाएगा,
0: बहुत अच्छा,
1: वो दोस्ती भी मजीद गहरी हो जाएगी। तारीफ बहुत ज़रूरी है।
0: नहीं नहीं, वैसे तो देखें जो तारीफ है ना, वैसे तो तारीफ अल्लाह ताला की ज़ात की है, उसकी है, उसके बाद उसके जो बंदे हैं, आपसे जो जुड़े लोग हैं, चाहे वो आपकी औलाद है, आपके पेरेंट्स, आपके हल्का अहबाब, तारीफ ये है कि बेसिकली आप उनको इनकरेज कर रहे हैं, उनको हौसला अफजाई उनकी कर रहे हैं, ये हौसला अफजाई होती है बेसिकली ना।
1: बिल्कुल।
0: किसी ने कोई काम किया है उसको थोड़ा सा
1: हौसला अफजाई भी बहुत ज़रूरी है।
0: हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है,
1: किसी भी शोबे में आप हों, जैसे हम रेडियो में हैं, इस फील्ड में भी हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कोई,
0: आप किसको सुना रहे हैं, जुबैर साहब को?
1: अच्छा,
0: जुबैर साहब ये कह रहे हैं कि हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है, आप सुन रहे हैं? हाँ। मेरी कॉल नहीं पिक की।
1: हौसला अफजाई,
0: कॉल पिक करना भी बहुत जरूरी है जुबैर साहब।
1: हाँ, ये भी जरूरी है। और जूनियर्स की हौसला अफजाई भी बहुत जरूरी है। मैं एक बात बताऊँ आपको, अगर आपका कोई सीनियर, मैं आपकी मिसाल देता हूँ, लेट्स सपोज आप मुझे एक जूनियर बंदे को इनकरेज करेंगे ना, या किसी भी जूनियर को इनकरेज करेंगे, कहेंगे यार आ यार तू ये कर सकता है, आजा हम ये करते हैं, तो तो अगर वो जूनियर बंदा नहीं भी कर सकता होगा ना, तो उस उसमें इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो आपको कहीं ना कहीं आपके आपको कम्पीट कर सकेगा,
0: बिल्कुल
1: आपके आस पास पहुँच जाएगा।
0: बिल्कुल ऐसे ही,
1: तो इनक्रेज करना बहुत ज़रूरी है।
0: बिल्कुल ऐसे ही,
1: बहुत ज़रूरी।
0: आप देखें ना, इसका थोड़ा सा हम अगर इसको थोड़ा उल्ट कर लें, अगर आप तनकीद करते हैं ना लोगों पे, या अपने घर वालों पे, या अपने सबऑर्डिनेट्स पे, या अपने कोलीग्स पे, उनका मोटिवेशन लेवल ही ख़त्म हो जाएगा, उनका काम करने को दिल ही नहीं करेगा, उनके काम में वो एनर्जी ही नहीं आएगी, उनके काम में वो आप देखेंगे कि वो चाम ही नहीं रहेगा। आप बहुत ज़्यादा जब तनकीद करेंगे, डीमोटिवेट करेंगे, लोगों का मजाक उड़ाएंगे,
1: बिल्कुल
0: लोगों को, मतलब ये जो चीज़ है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप, और फिर आप अपना रिलेशन भी कमज़ोर करते हैं, वो किसी भी रिलेशन में, चाहे आप दोस्त हैं, चाहे आपकी वाइफ है, चाहे आपके हल्का बाप कोई भी है, आप अपना रिलेशन कमज़ोर करते हैं जब आप लोगों पर तनकीद करते हैं, उनको ताने देते हैं।
1: सही बात है।
0: आप, ये ना रिकॉर्डेड हिस्ट्री है दुनिया की, कह लें कि जिस जगह जिस माहौल में लोगों को तनकीद का सामना करना पड़ा है, या फिर डीमोटिवेट किया गया है, या उनको डिस्करेज किया गया उनकी ज़िंदगी में, वो ग्रोथ नहीं कर सके लोग।
1: सही बात है।
0: वो किसी भी रिलेशन, उनके रिलेशन ही नहीं बढ़े,
1: वो नीचे चलते गए।
0: हाँ,
1: नीचे नीचे नीचे।
0: हाँ,
1: वो ऊपर नहीं,
0: अंदर से ख़त्म हो जाते।
1: सही बात है।
0: तो ये जो इनक्रेजमेंट है, ये जो लोगों की हौसला अफजाई है, लोगों को इनक्रेज करना, अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने रिश्तेदार, अहलोयाल सबको, अपने बच्चों को इवन, आप देखें ना, आपके घर में बच्चे होते हैं ना, एक बच्चे को यार है, ओ ये मेरा बच्चा बड़ा ज़बरदस्त है, आप कहते रहेंगे कहते रहे, वो बच्चा बड़ा ज़बरदस्त, एक बच्चे को यार है बड़ा नलायक है। अक्सर ये पहले वक्तों में बहुत होता था, आई एम सॉरी टू से, बट बैक इन,
1: ऐ नकम्मा है, ऐ चंगा है,
0: ऐ बिल्कुल नकम्मा है, यार नलायक है वो बेचारा, सुन सुन के ना उसके लाशऊर में ये बैठ जाता है कि ये नलायक है, नलायक, वो नलायक ही हो जाता है,
1: वो नलायक ही हो जाता है।
0: तो जिसको कहेंगे ना यार ये बच्चा मेरा बड़ा कम है, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं काम का, क्योंकि उसके जहन में ये बिठा दिया गया है कि तुम काम के हो और तुम काम के नहीं हो। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बड़ी मैटर करती हैं साइकोलॉजिकली, और ये साइकोलॉजिकली आपने अपने बच्चों को अगर ग्रो करना है, उनको ग्रोथ देनी है, तो उनको इक्वली आपने इनक्रेज करना है,
1: ट्रीट करना
0: है, इक्वली उनको ट्रीट करना है, और इक्वली उनको प्यार भी करना है, उनसे मोहब्बत भी करनी है, और उनका साथ भी देना है। और ये इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर पेरेंट्स।
1: सही बात है।
0: माँ बाप का बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल है।
1: बिल्कुल।
0: तो सर, बात चली थी आपके ओरा से,
1: बिल्कुल
0: आपके जो एक पॉजिटिव ओरा, जब हम मौसूल करते हैं तो हमारे अंदर पूरी एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। आप ये याद रखिएगा, एक नेगेटिव बंदा किसी कमरे में होगा ना, वो पूरे कमरे को नेगेटिव कर देगा। सिर्फ बंदे को नहीं,
1: सही,
0: पूरे कमरे को,
1: पूरे कमरे को,
0: पूरी दरो दीवार को।
1: एसी खराब हो जाएगा, आप पंखा आवाज करना शुरू हो जाएगा,
0: ना करो खराब हो जाएगा, तो मेहरबानी है।
1: ये आपने बात 16 आने सच कही
0: है ना, वो ऑटोमेटिकली ना उसका जो ऑरा जब आएगा ना, जब आप 4-5-6 बंदे बैठे होंगे, तो वो एक अजीब सी वाइब्स दे रहा होगा,
1: और उसकी जो नेगेटिविटी है वो आप में भी कहीं ना कहीं आना शुरू हो जाएगी, कहीं ना कहीं वो वाइब आप में भी आएगी अगर वो नेगेटिव बातें कर रहा होगा।
0: एग्जैक्टली। और जब आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं ना ऐसे लोगों के साथ, अली, बहुत ज़्यादा, आपके अंदर वो आदत, वो औसाफ आना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए ये कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग सब कहते हैं कि यार अपनी कंपनी, वो जो है ना आपने अच्छी रखनी है,
1: दोस्त अच्छे रखें,
0: दोस्त अच्छे रखें, इसलिए हम आपको दोस्त रखते हैं ना। क्या करूं, ऐसे दोस्त किसके होंगे यार, जो बंदा खमीरी रोटियां ले रहा है और आपने कहा यार प्लीज यार आ जाओ मेरे साथ।
1: वैसे रोटी मजे की थी ना,
0: रोटी कमाल थी यार,
1: मजा आया ना,
0: जबरदस्त। उन्हीं के लेकिन जो पाए थे ना,
1: आए,
0: उनका जो शोरबा था ना,
1: वो भी पड़ा हुआ है, वो गर्म करने गया,
0: वो किधर गया,
1: आ जाता आ जाता,
0: रेडियो से बाहर गया,
1: नहीं नहीं इधर ही है।
0: अच्छा,
1: इधर ही है।
0: वेल जनाब, अली रजा हमारे साथ हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और बड़ी मजे की गुफ्तगू जारी है। लेकिन अभी मैं एक ट्रैक चलाना चाह रहा हूँ सर, मैं जो ट्रैक चलाने जा रहा हूँ ना, ये बड़ा सिग्नेचर ट्रैक है मेरे शो का।
1: अच्छा, And मैंने सुना होगा लास्ट
0: में, डेफिनेटली आपने सुना होगा, और आपको बड़ा मज़ा आएगा जब मैं इस ट्रैक को चलाऊंगा। और अब बहुत से हमारे लिसनर इस पहर में जो आते हैं ना, तो वो काफ़ी देर तो मेरे से पूछते रहे सिंगर का नाम,
1: अच्छा
0: लिरिक्स, गाने वाले कौन है। मैंने कहा नहीं, आप वो सर्च करें, बट दिस इज़ समथिंग वेरी अमेजिंग, बड़ा मज़े का है। और आप कभी होता है ना कि आप अपना हाल दिल बयान करना हो, आप किसी को तलाश करते हैं, को बड़ा अपना बड़ा करीबी, तो हम इस ट्रैक को चलाते हैं, फिर उसके बाद आपके हाल दिल की बात जानते हैं। सो यू आर ट्यून्ड टू एफएम 101, मुझे कहते हैं फरहान खान, आपका मेरा साथ इस शो में रहता है रात के 12 बजे तक। द लेट नाइट शो विद फरहान खान। हियर वी गो।

0: अपने संग
1: आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए,
2: शेर पढ़ने लगे, गुनगुनाने लगे।
1: पहले मशहूर थी अपनी संजीदगी,
2: अब तो जब देखिए मुस्कुराने।
1: हाय हाय हाय हाय। अच्छा, मुझे ना आपकी जो मुस्कुराहट है ना, उसके पीछे एक राज आज पता चल गया है।
2: कौन सा राज?
1: कि आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए, शेर पढ़ने लगे, शेर पढ़ने लगे, गुनगुनाने लगे। पहले मशहूर थी अपनी संजीदगी,
2: अब तो जब देखिए
1: समझ आ गई है। ये जो आपकी मुस्कुराहट है ना,
2: मैं पहले बहुत संजीदा था।
1: नहीं, हाँ वही ना, पहले आप बहुत संजीदा होते थे छोटे थे जब हम इकट्ठे होते थे। बिल्कुल अली का हर वक्त शक्ल बनी, हर वक्त मुंह बनाना।
2: अब जब से आपको देखा ना,
1: नहीं सर, मैं नहीं। वैसे ऐसा होता है ना जिंदगी में, आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं, आपको सरे राह ऐसे दोस्त मिल जाते हैं, या अल्लाह खैर इसके खैर। अच्छा जी, अब्दुल वहाब साहब को भी वेलकम कहते हैं।
2: सब ठीक ठाक है?
1: हाँ, मुझे नहीं लग रहा। अच्छा जी, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे मिलते हैं जिनके मिलने के बाद ना आपकी ज़िंदगी की आदत बदल जाती हैं, है ना। वो कहते हैं ना, दोस्त रिफ्लेक्शन होते हैं आपका। या कुछ लोग इस तरह के होते हैं, आप कुछ लोग म्यूज़िक को पसंद करते हैं, तो वो आप उनके साथ रह रहे के म्यूजिक को पसंद करने लग जाते हैं।
2: सही बात।
1: कुछ मुसव्वरी को पसंद करते हैं,
2: उनकी आदतें आपके अंदर आ जाती हैं।
1: तो ये बंदा जो राइट में मेरी साइड पे बैठा है, मैं चाह रहा हूँ ये सामने आ जाए,
2: कोई आदत ना आ जाए,
1: कोई आदत मेरे अंदर ना आ जाए। ज़ैदी साहब मुझे जिस तरह देख रहे हैं, जिस तरह वो बकरा कसाई को नहीं देखता।
2: हाँ, ये कसाई है क्या बकरा?
1: नहीं, ये मुझे तो इस तरह देख रहे हैं, कसाई मैं लग रहा हूँ, ये बकरा लग रहा है, ऐसे देख रहे हैं मुझे।
2: नहीं, ज़ैदी साहब इंतहाई शरीफ इंसान है
1: आपके मुताबिक?
2: मेरे मुताबिक।
1: अच्छा, बस अपना मुताबिक ठीक कर ले।
2: असल में मैं शाम टाइम आता हूँ ना।
1: हाँ,
2: रात टाइम आते हैं। हाँ, रात वाले करना मैं आपको पता। हाँ, है
1: बस मैं बता नहीं सकता कुछ भी। अच्छा सर, जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं सो जिनसे मिलने के बाद ना सच में आप बदल जाते हैं। अच्छा, ये जो रिफ्लेक्शन है ना, ये जो आपसे मिलके हम कुछ बदल से सच में आप बदल जाते हैं, आप मुस्कुराना लग जाते हैं अचानक से, हंसने बैठे बैठे आपको आपका हंसा निकल जाता है।
2: और जब वो शख्स आपको छोड़ के चला जाए
1: सर,
2: आपसे दूर हो जाए,
1: पहले एकदम एकदम जुदाइयों की बात तो ना कर रहे हैं, अभी तो मिले हैं।
2: मेरी पोएट्री आने लगी है ना।
1: अच्छा, चले बिस्मिल्लाह।
2: तो जब वो आपको छोड़ के चला जाए, तो फिर आप कहते हैं कि नए कपड़े बदल कर जाऊं कहां और बाल बनाऊं किसके लिए, नए कपड़े बदल कर जाऊं कहां और बाल बनाऊं किसके लिए, वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए। जिस धूप की दिल में ठंडक थी, वो धूप उसी के साथ गई, इन जलती बलती गलियों में अब खाक उड़ाऊं किसके लिए। वो शहर में था तो उसके लिए, हाँ सब गौर कीजिए,
1: वाह वाह वाह, मैं हमतन गोश आपको समाप्त फरमाऊं।
2: वो शहर में था तो उसके लिए औरों से भी मिलना पड़ता था।
1: हाय हाय हाय हाय, ज़ैदी साहब, वो शहर में था तो उसके लिए
2: औरों से भी मिलना पड़ता था। अब ऐसे वैसे लोगों के मैं नाज उठाऊं किसके लिए।
1: वाह वाह वाह वाह।
2: अब शहर में उसका बदल ही नहीं, कोई वैसा जाने गजल ही नहीं, ऐवाने गजल में लफ्जों के गुलदान सजाऊं किसके लिए।
1: वाह वाह।
2: मुद्दत से कोई आया ना गया, सुनसान पड़ी है घर की फिजा, इन खाली कमरों में नासिर अब शम्मा जलाऊं किसके लिए।
1: ओए ओए ओए,
2: अब शम्मा जलाऊं किसके लिए।
1: हाय ना कर लड़के, मुझे दुखी कर दिया तूने तो।
2: ना ना, दुखी नहीं होना,
1: मतलब
2: आपको भी किसी की याद।
1: मैं अब नए कपड़े पहन के जा मैंने सर कपड़े नहीं पहने नहीं आज के बाद
2: नए
1: नए कपड़े पहन के खमीरियां लोटी लेने जाऊंगा।
2: हाय हाय हाय हाय, नासिर काज़मी की गजल थी और वन ऑफ माय फेवरेट।
1: जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, नैयर शहजाद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह वेरी नाइस शो, आई एम लिसनिंग फ्रॉम यमन।
2: ओके, थैंक यू सो मच। आपको हमारी आवाज की समझ लग रही है, हमारी लैंग्वेज की?
1: सर ऑल द वे यमन से नैयर शहजाद।
2: अच्छा, नैयर शहजाद सुन रहे हैं। पाकिस्तानी होंगे,
1: पाकिस्तानी हो, ऑब्वियसली।
2: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शहजाद भाई।
1: अदी अब्बास हमें सुन रहे हैं इस वक्त और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, होप यू डूइंग वेल, आई एम आदिल अख्तर अब्बासी एंड अब चले जी बड़े ही
2: बहुत अच्छा मैसेज पढ़ा
1: इन्होंने ना असल में काफ़ी दोस्तों के साथ ये बैठे हैं, सब दोस्तों को ये कह रहे हैं कि जी मेरी तरफ से सलाम पेश कर दें। थैंक यू सो मच जी अब्बासी साहब, सलामत रहें, खुश रहें। बरकत रमदानी जमाली हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: मैनू खैर नहीं लग रही
1: हसन अली हमारे साथ हैं, कहते हैं आर जे फरहान एन आर जे अली रज़ा अस्सलाम, थैंक यू सो मच जी अब्बासी साहब, सलामत रहें, खुश रहें। बरकत रमदानी जमाली हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
2: मैनू खैर नहीं लग रही

0: आगे मुक गई है,
1: आगे मुक गई।
0: अच्छा सर, बहुत शुक्रिया आपका। हसन अली हमारे साथ हैं, और ज़िंदगी जीने के हमेशा दो असूल रखो, तो फूलों की तरह बिखरो तो खुशबू की तरह।
1: हाँ, इन्होंने लिखा है कि ज़िंदगी जीने के हमेशा दो ही असूल रख, रहो तो फूलों की तरह,
0: आय हाय हाय,
1: बिखरो तो खुशबू की तरह,
0: रहो तो फूलों की तरह,
1: आय हाय हाय,
0: बिखरो तो खुशबू
1: की तरह,
0: आय हाय, वाह वाह वाह। अच्छा जी, सारम कहते हैं, यू आर नेवर टू ओल्ड टू हैव अनदर गोल और अनदर ड्रीम। अच्छा चले, जबरदस्त। हसन अली हमारे साथ हैं, कहते हैं, हैव अ नाइस, वेरी नाइस शो एंड वेरी नाइस आरजे।
1: ये मुझे ही कहा भाई इन्होंने।
0: हाँ हाँ, डेफिनेटली आपको ही कहा।
1: वेरी नाइस तो मैं ही हूँ।
0: वेरी वेरी नाइस है।
1: हाँ, थैंक यू।
0: कभी कभी एक गलत इंतखाब इंसान की जिंदगी की मुस्कुराहट छीन लेता है। अच्छा, ऐसा होता है? कौन सा गलत इंतखाब, किस तरह का, आप किसको गलत इंतखाब?
1: इन्होंने लाजमी कोई शादी करने से पहले कोई गलत इंतखाब किया होगा।
0: अच्छा
1: बिल्कुल, ये ऐसा इंतखाब हो सकता है जो इतने दुखी हो गए सोशल मीडिया पे ये बता रहे हैं हमें।
0: हाँ, पता नहीं, अपना अपना दुख होता है, इंसान बड़ा दुखी है यार।
1: कोई गल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह साहब, दुख साझा करो तो सानू मजीद गल्लां दसो।
0: शायद हम दुख का कुछ
1: मदावा कर सकें।
0: वेरी नाइस टॉपिक। हसन अली हमें कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं प्रोग्राम, बहुत ज़बरदस्त है प्रोग्राम में। नहीद अख्तर की आवाज़ में कोई नगमा प्ले कर दें, शुक्रिया। नचीज आशिक,
1: चीज आशिक,
0: हाँ कुछ इस तरह ही है, देखें पढ़े ना चीज, आगे आप पढ़िएगा।
1: नहीं, मुझे तो इनका ना चीज वाले मैसेज, ऐसे मैसेज मुझे नहीं शो होते।
0: अच्छी बात है। अच्छा, हसन अली कहते हैं, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हसन, कितनी दफा पूछना है यार।
1: हसन, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और हमने पाए खा लिए हैं, खमीरी रोटी भी खा ली है। हाँ जी, रोटी खाने के बाद ना अब दौड़ लगानी पड़ेगी हजम
0: पैदल करने के लिए।
1: पैदल चलते हैं वापस मुस्लिम टाउन।
0: अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम करते हैं प्रोग्राम में, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम। चलिए जी, आपका मैसेज शामिल हो चुका है। सोबत पूर्व बलूचिस्तान से हमारे साथ हैं। समातों पर नहीं, मुशाहदों पर एतबार करें, लोग अक्सर बेहतरीन इंसानों के बदतरीन किस्से सुनाते हैं। ओए होए होए होए होए होए,
1: कोई एक कदा सानू भी सुनाओ।
0: ये इशारों की जुबान मुझे बहुत बुरी लगती है। ये बंदा जो इशारे कर रहा है,
1: ये इसका काम ही इशारे करना है। ये कभी इशारे करेगा,
0: आपको पता है इसको इन इशारों की वजह से पिछले हफ्ते मार पड़ी है।
1: अच्छा,
0: मोहल्ले में खड़ा हुआ इशारे कर रहा था, सो मोहल्लेदारों ने मिलके मारा इसको।
1: असल में ना इसका इशारा हमेशा लाल रहता है, इस वजह से इसको मार पड़ी होगी। इसने कभी ग्रीन सिग्नल दिया ही नहीं किसी को। अच्छा, मुझे भी इशारे कर रहा था पीछे, मैं डर गया, मैं क्या पता नहीं कौन पीछे खड़ा है।
0: ज़ादी साहब,
1: की ज़ादी साहब कौन सी।
0: अच्छा जी, कहते हैं, समातों पर नहीं, मुशाहदों पर एतबार करें, लोग अक्सर बेहतरीन इंसानों के बदतरीन किस्से सुनाते हैं। बेहतरीन इंसानों के, अच्छा नहीं, ये वैसे ना ये फैक्ट है, आप कभी ना ऐसा होता है ना, आप किसी की तारीफ कर रहे होंगे ना, किसी महफिल में बैठे किसी बंदे के बारे में कह रहे, उसकी तारीफ कर रहे, एक बंदा उठ के ना एकदम से साथ ही कुछ अजीब व गरीब से गुफ्तगू शुरू हो जाएगा, उसकी बद तारीफियाँ करना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मैं कहता हूँ कि यार, अल्लाह पाक अगर उसको लोग इज्जत दे रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, या कुछ भी उसकी एक्टिविटी, वट एवर, किसी और सिनेरियो में वो इसको ले, तो फौरन से ना लोग तनकीद शुरू हो जाते हैं करना।
1: बिल्कुल, किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती।
0: हाँ
1: ठीक है, और किसी की प्रमोशन बर्दाश्त नहीं होती।
0: ओए होए, बड़ा दुखी आदमी है इस मामले में, बड़ा दुखी आदमी।
1: और किसी कोई अच्छा खा ले, ये बर्दाश्त नहीं होता।
0: अच्छा, ये भी होता है।
1: और किसी की तारीफ हो जाए, किसी की तारीफ हो जाए आपके सामने, ये भी बर्दाश्त नहीं होता। जैसे आपने बताया ना कि कोई तारीफ कर रहा था उसकी, उसको बर्दाश्त नहीं हुई होगी,
0: उसकी दो तीन
1: क्या खामियां भी नहीं है, तू इन सारियां नेकी गिनाई जा रही है, खामियां मेरे को नहीं।
0: क्या बात है।
1: और हाँ सब ऐसे होता है कि एक शख्स कभी किसी दूसरे के लिए अच्छा ही होता है, और वही शख्स किसी दूसरे के लिए बुरा ही होता है।
0: हाय हाय हाय, क्या यार, इस बंदे की बातें ना यार, कॉपी पेंसिल लेके आओ, इसको नोट करो, ये बातें
1: साइड पे आनी, साइड पे बैठ के
0: नहीं, वो मेरे से साइड पे कर दो यार। इस बंदे की बातें यार नोट करने वाली है यार, दोबारा मुकर्रर जरा इस बात
1: को, फोन में बोल गए
0: यार।
1: नहीं नहीं, मैं आपको
0: दोबारा से इनको याद है ये बात, जैदी सर नोट कर लेना सर, प्लीज बताइएगा।
1: कोई शख्स किसी के लिए
0: ओके
1: सारा का सारा अच्छा होता है,
0: सारा का सारा अच्छा होता है,
1: और वही शख्स किसी दूसरे के लिए सारा का सारा बुरा होता है।
0: अरे वाह, अरे वाह।
1: हाँ सब, ऐसा क्यों होता है
0: सर? बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा ना, ये यार इसके अपने

0: मोबाइल का प्लीज़ साइलेंट पे कर दें। अली भाई, बड़ी खूबसूरत आपने बात की है। देखिए, हर बंदे का ना ज़िंदगी का हर एक का अपना अपना तजर्बा होता है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे आपने फरमाया कि कोई शख्स किसी के लिए बहुत अच्छा है और वही शख्स किसी के लिए बहुत बुरा है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि जिसके लिए अच्छा है उसके तजर्बात अच्छे हैं, जिसके लिए बुरा उसके तजर्बात उसके साथ बुरे हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि हम लोग क्या करते हैं, व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि हम ये देखते हैं कि एक शख्स किसी के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, हम ये करते हैं कि जी हम उसकी बुनियाद पे अपने ताल्लुकात ख़राब कर लेते हैं, अपना रिलेशन ख़राब कर लेते हैं, अपनी परसेप्शन ख़राब कर लेते हैं।
1: यू आर एब्सोल्युटली राइट,
0: बट दैट गाय इज़ वेरी गुड विद यू। बंदा यार, अली रज़ा मेरे साथ बहुत अच्छा है, मेरे साथ हर मामले में बेहतर है, लेकिन चूंकि वो मेरा जानने वाला अली रज़ा के साथ उसका, अब आपको, हमें नहीं पता होता कि यार एक्चुअल सिचुएशन क्या है।
1: और ऐसा मेरे साथ हो भी चुका है।
0: अच्छा,
1: ऐसा मेरे साथ हो भी चुका है, काफ़ी दफ़ा हुआ
0: है ना,
1: कि एक शख्स जो कि मेरे लिए अच्छा है, उसने कभी मेरे साथ कोई बुरा नहीं किया और मेरी नज़र में उसका एक परसेप्शन जो है ना वो बहुत अच्छा आता जा रहा है शुरू से, और कोई एक दूसरा शख्स जो उसके एंटी है, उसके अगेंस्ट है, उसके उसके दिल में उसके लिए वो रिस्पेक्ट नहीं है उसके बारे में वो वैसा नहीं सोचता जैसा मैं सोचता हूँ, और जब वो शख्स किसी के लिए बुरा करता है, चाहे वो उसके लिए हो या किसी और के लिए हो, वो फिर सबको भड़काता है।
0: अच्छा,
1: कि यार इनके खिलाफ आओ या कार्रवाई करिए, या आओ इसके खिलाफ ये करते हैं,
0: रियली
1: आओ इसके खिलाफ एक महाज करते हैं।
0: यानी वो उनको भी शामिल कर लेता
1: है, सारों को शामिल करते हैं ना, एक वो ग्रुप बनाता है उसके अगेंस्ट। तो अगर तो आप समझदार होंगे, जब कोई शख्स आपके साथ बुरा ही नहीं है, अगर आप समझदार होंगे तो फिर आप उन लोगों से दूर रहेंगे जो आपको वरगला रहे हैं, जो आपको इस काम में आपको इंसिस्ट कर रहे हैं कि यार आओ उसके खिलाफ चलें।
0: अच्छा, ये ना इंसान के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है ना
1: जी, हाँ,
0: कि आप कैसे,
1: आपकी सोच पे,
0: आपकी सोच पे, कि आपको, आपको विजडम पे, कि आपको एट दैट टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार नहीं, ये बंदा चूँकि किसी के, इसके, इनके आपस में ताल्लुक बेहतर नहीं है, तो हमें पार्टी नहीं बनना उसके लिए। अच्छा अली, मेरे ख्याल में हर बंदा जो है परफेक्ट तो है नहीं है, हर बंदे में, मेरे में, हम सब में कमियाँ कोताहियाँ होती हैं, हम हर वक्त अच्छे भी नहीं रह सकते ना, और अच्छे बन भी नहीं सकते, कई मकामात पे हमें अपने असूलों पे कायम रहना होता है, कई मकामात पे हमें अपनी जो एक ग्रेस होती है, डिग्निटी होती है, उसका भी ख्याल रखना होता है, अपना ख्याल रखना होता है, बट एट दैट पॉइंट कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है ना,
1: जी,
0: कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यार हर बंदा हर वक्त एक अच्छा जैसा ही हो, अच्छा ही हो।
1: आप हर वक्त अच्छे रहने का लबादा नहीं ओढ़ सकते,
0: है ना,
1: आप हर वक्त बुरे रहने का लबादा भी नहीं ओढ़ सकते। आप ये नहीं कि आप हर वक्त, आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, इसकी डिफरेंट डायमेंशन होती हैं। आप किसी वक्त में अच्छा मूड है तो आप बहुत अच्छे हैं, आपका मूड बुरा है तो आप सही तरीके से किसी से बात नहीं कर रहे, तो उसका एक इम्पैक्ट जाता है अगले बंदे पे।
0: बिल्कुल जाता है,
1: कि यार ये फलां वक्त में तो बड़ा अच्छा था मेरे साथ, और अभी जो ये बात कर रहा है, ये मेरे साथ सही इसने बात नहीं की। और ऐसा ना ज़्यादातर होता है जब आप किसी जगह पे पब्लिक डीलिंग कर रहे होते हैं ना, तो कोई आपके पास आए और आप उसको मुस्कुरा के ना मिलें, जब भी कोई पब्लिक डीलिंग में, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आपकी कोई पब्लिक डीलिंग है, तो जब भी आपके पास कोई सायल आए, कोई भी आपके पास आए, उसको मुस्कुरा के मिले।
0: वाह,
1: उसका काम हो ना हो, काम करें ना करें, लेकिन जो आपकी मुस्कुराहट होगी ना,
0: बहुत अच्छी,
1: जो आपकी स्माइल होगी, वो ता उम्र याद रखेगा, यार कामन इसी होया लेकिन बंदा बड़ा चंगा
0: है। हाय हाय हाय, बहुत अच्छी बात है।
1: अक्सर हमारी जिंदगी
0: ये भी कितना बड़ा आर्ट है ना, आपको पब्लिक डीलिंग आनी चाहिए,
1: पब्लिक डीलिंग।
0: अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम चूंकि जब पब्लिक सेक्टर्स में जाते हैं अपने काम के लिए, अब वो बंदा बेचारा किस कंडीशन में है, किस माहौल में है, किन हालात में है, उसके क्या मसाइल हैं, उसके क्या इश्यूज़ हैं, हम ना इस बात को नहीं समझ रहे होते, और हमें ये लगता है कि यार ये बड़ा रूडली बोल रहा है, या इसका पता नहीं उससे पहले कितने लोगों ने आके उसको डांटा हो, उसके साथ गलत बिहेव किया हो।
1: सही बात,
0: वी डोंट अंडरस्टैंड। हमें ये होता है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कि आप जैसा भी आपका हालात चीज़ें, आपने मुस्कुरा के लोगों से मिलना है, खास तौर पर अगर पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, जब
1: आप डॉक्टर हैं,
0: डॉक्टर
1: आपके पास कोई मरीज आया,
0: हाँ,
1: आपके पास 10 मरीज आए हैं, आपने उनको सही तरीके से, आप उनको अच्छा इंट्रैक्शन रहा है, 11वें मरीज की दफ़ा आप थोड़ा सा रूड हो गए हैं, या आपने वो रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो क्या वो पेशेंट कभी आपके पास दोबारा आएगा, क्योंकि यार वो डॉक्टर ही बड़ी आकड़ वाला सी यार, उन्हें तो स्वाद ना गल ही नहीं सुनी साड़ी।
0: सर ये जो हमारे बुज़ुर्ग हैं ना, हमारे बड़े हैं
1: जी जी,
0: वो तो वैसे ही जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, उसका इखलाक देखते हैं। अगर डॉक्टर का इखलाक नहीं है तो वो कहते हैं यार डॉक्टर ही नहीं चंगा।
1: हाँ।
0: चाहे वो कितना भी कॉम्पिटेंट है, डॉक्टर के लिए तो खैर बहुत ज़रूरी है कि उसने पेशेंट के साथ जितनी उसको सुनना है। मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंट की आधी बीमारी जो है ना डॉक्टर को सुनने के बाद ठीक हो जाती है।
1: सही कह रहे हैं।
0: तो आधी बीमारी जो मेडिसिन से ठीक हो जाएगी,
1: मेडिसिन से हो जाएगी,
0: और मेडिसिन रेगुलर खानी चाहिए,
1: है ना। आप खा रहे हैं जो आपको मैंने नुस्खा दिया था?
0: नहीं हकीम साहब, छाड़ देती है
1: छाड़ देती है, फिर ताड़ा कुछ नहीं बनता।
0: हकीम साहब तुम्हारे नुस्खे जड़े ना वो मेरे नहीं,
1: वो कामयाब ने मेरे नुस्खे।
0: चले सर बहुत शुक्रिया, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। आप अच्छा मशवरा देने वाले हैं, जारी बात है।
1: मैंने आपको वो नाश्ते पे भी मशवरे दिए थे ना काफ़ी सारे।
0: हाँ, उन मशवरों पे हम ज़रूर अमल करेंगे। और उस वाले से जनाब मुझे क्या, वो तो एक पब्लिक के लिए पूरे मशवरे थे, हर उस बंदे के लिए थे जो अपना मुस्तकबिल बनाना चाहता है।
1: बेसिकली फरहान भाई, जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, स्टूडेंट होते हैं, तो उस वक्त में, उस टाइम में हमें गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है।
0: True.
1: कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है, हमने अपनी डायरेक्शन क्या सेट करनी है।
0: सबसे इम्पोर्टेंट चीज़,
1: अगर हमने CSS करना है तो हमें किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, हमें क्या पढ़ना पड़ेगा।
0: बिल्कुल ठीक।
1: अगर हमने डॉक्टरी करनी है तो हमारी क्या डायरेक्शन है, वो बहुत ज़रूरी है।
0: बिल्कुल ठीक।
1: और अगर आपको आपकी ये स्टूडेंट लाइफ में, मैट्रिक में या FA में कोई बंदा अच्छे तरीके से गाइड कर देना कि यार फलां कर लो, उसमें फ़ायदा।
0: बिल्कुल ठीक।
1: तो उस चीज़ को हमें अडॉप्ट करना चाहिए। मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई भी थी।
0: नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल, आपने मुझे लेट बताई ना, मैंने मैटर कर लिया हुआ था उस टाइम
1: तुसी ना ना कीता होंदा ते ताड़ा कुछ बन जाना।
0: आज मेरा कुछ बन जाना, आज मैं किधरे लग जाना सी, है ना।
1: अच्छा वैसे खान साहब, आपने बहुत सारे शोज किए हैं।
0: हाँ।
1: मेरे ख्याल 22 साल हो गए आपको।
0: 20 साल
1: हो गए, 20 साल हो गए FM पे प्रोग्राम करते। आपने बहुत सारे TV शोज भी किए, बहुत सारे पॉडकास्ट भी किया, पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट भी किया, और दुबई में माशाल्लाह आपने झंडे गाड़े।
0: हाँ।
1: और क्या आपकी वीडियोज वहाँ से आती रही, आप क्या बात है आपकी, आपकी तो क्या ही बात है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने इतने सारे शोज किए हैं, कभी आपने सोचा था
0: कैली रजा के साथ
1: कि मेरे साथ आपको बैठने का मौका
0: मिलेगा? मैंने अल्लाह की कसम ऐसा मैं सोचते ही नहीं, कभी भी
1: नहीं सोचते।
0: तौबा कर,
1: सोच लेना जी ना सोचा होता तो मैं 4 महीने पहले आ जाता तुहाडे को।
0: अच्छा नहीं, पहले वाली बात आपकी जो थी कि आपको गाइडलाइन वाली बात।
1: हाँ हाँ
0: सर जी, ये एक इतना बड़ा खैर का काम है ना, मुझे ऐसा लगता है आज के दौर में कि हमारे यंगस्टर्स जो हैं, हमारे बच्चे जो हैं, उनको आप गाइडलाइन दें।
1: बिल्कुल।
0: यानी कि आप अपने फ्यूचर की गाइडलाइन दें। एंड आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय यू कि आप माशाल्लाह, आपके पास अल्लाह ताला ने वो प्लेटफॉर्म्स दिए हैं या अल्लाह ताला ने वो स्किल्स दिए हैं कि आप बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि यार बच्चा अगर अपना फ्यूचर करना चाह रहा है वो। हमारे यहाँ ना थोड़ा सा अली भाई एक इशू है, हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा, अब उनका ट्रेंड गुज़श्ता कुछ सालों से मैथ्स काम की तरफ जा रहा है। वो कहते हैं जी मैथ्स काम कर लेंगे तो मीडिया में आ जाएंगे,
1: मीडिया में आ जाएंगे।
0: अब मीडिया को वो समझते हैं कि एंकर बनना ही मीडिया है, लेकिन मीडिया के अंदर भी बेशुमार
1: लाइन बहुत वास्ट, बहुत वास्ट है।
0: लेकिन अब मैं कहता हूँ कि मीडिया में आएँ, ज़रूर आएँ, ज़रूर आएँ, ज़रूर आएँ, आप आएँ, आपका हक है। मैं ये नहीं, इनका डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन आप समझें कि मीडिया बहुत वास्ट है। मीडिया सिर्फ माइक्रोफोन नहीं है, मीडिया सिर्फ पॉडकास्टिंग नहीं है, टेलीविज़न एंकरिंग नहीं है, न्यूज़ नहीं है, मीडिया और बहुत कुछ है। मीडिया के अंदर आप PR इंडस्ट्री में जा सकते हैं, मीडिया के अंदर आप न्यूज़ रूम में जा सकते
1: रिपोर्टर्स
0: हैं, रिपोर्टिंग्स में जा
1: सकते हैं, कर सकते हैं
0: आप, MCR में बड़ा काम
1: आप
0: है,
1: लिख सकते हैं,
0: राइटिंग कर सकते हैं। अच्छा लेकिन इसके साथ साथ ना, मैं अब दोस्तों को ये कहता हूँ कि आप इसके साथ साथ कुछ स्किल्स भी लें। आप
1: बिल्कुल,
0: आपको एडिटिंग भी आनी चाहिए, आपको ग्राफिक्स भी आनी चाहिए, और आज के दौर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं कहता हूँ कि आपको AI के ऊपर कमांड होनी चाहिए। मेरे एक दोस्त हैं, एक CEO हैं, बड़ी एक अच्छी कंपनी में हैं, उसके CEO हैं, वो कहते हैं कि जी मैं पिछले दिनों मैं AI एक्सपर्ट ढूँढ रहा था और मुझे एक AI एक्सपर्ट बच्चा कोई नहीं मिल रहा था जो कि प्रॉम्प्ट अच्छा दे सकता है बस।
1: अच्छा।
0: जिसको प्रॉम्प्ट के ऊपर एक्सपर्टीज़ है IT के। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप, मेरे तकल्लुफ से दोस्त है, मैंने कहा आप क्या पे करेंगे उसको? कहता जी मेरी इनिशियल जो उसके लिए सैलरी है ना 4 लाख रुपए है।
1: वाह। और किस लेवल पे फरहान भाई उसका काम होगा?
0: हाँ यानी कि उसको प्रॉम्प्ट यानी कि क्या देना है AI को, आईटी से रिलेटेड उसकी थोड़ी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। कहते मुझे बच्चा कोई नहीं मिल रहा, क्योंकि अब बच्चों का जो ट्रेंड है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अनफॉर्चुनेटली डिजिटल मीडिया ने हमारा इतना टाइम सर्व कर दिया है, इतना वेस्ट करें टाइम उसके ऊपर, फिर उसके साथ बच्चों का जो ना ये वी लॉगिंग के ऊपर या कॉन्टेंट क्रिएशन के ऊपर या दूसरी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा अब इंटरेस्ट डेवलप होता
1: है, रुझान
0: हो। मैं ये नहीं कह रहा ना करें, आप करें, बट आप ये देखें कि जो आप कर रहे हैं उसका कितना प्रोडक्टिव है, उसके फ्यूचर में क्या फ़ायदे हैं। ये ना बड़ा एक ट्रिकी सा काम है, बट आई ऑलवेज अप्रिशिएट कि आप लोगों को गाइड करते हैं कि यार एटलीस्ट आपको स्किल्स लें,
1: स्किल्स लेनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, स्किल्स होनी चाहिए और बहुत सारी स्किल्स हम सीख सकते हैं। जैसे आपने लेटेस्ट जो स्किल चल रही है एआई की बात की,
0: जी जी जी,
1: और मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि यार ठीक है आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, मास्टर्स करें आप, कुछ भी करें, बीएस करें, एमएस करें, कुछ भी करें, लेकिन आपके पास स्किल्स भी होनी चाहिए, चाहे वो कंप्यूटर की फील्ड में हो, चाहे वो किसी और फील्ड में हो। अच्छा मेरा ना एक दफ़ा बड़ा दिल किया कि मैं इलेक्ट्रिशियन का जो काम होता है ना,
0: अच्छा
1: ये घर के छोटे मोटे जो काम होते हैं, मेरा दिल किया कि मैं वो सीखूं।
0: यार काश आप सीख लेते, हमारे इतना काम निकलता रहता है
1: मैंने इस वजह से नहीं ना सीखा, सीख लेते फिर मुफ्त काम करना पैना सारे।
0: लेकिन आप इस नीयत से करेंगे ना कि हाँ। थोड़ा सा मुफ्त का काम भी करना
1: जी
0: है
1: जी।
0: तनु पैसे वाला भी मिल जाना,
1: मिल जाना,
0: नीयत ही नहीं सही सी थोड़ी
1: नीयतानु पाक
0: अभी नीयत ना। फिर सीखा काम?
1: मैंने नहीं सीखा।
0: क्यों?
1: लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सीखूं।
0: अच्छा,
1: मेरा एक दोस्त है, मैंने उसे बात की, मैंने कहा यार मैंने सीखना है, वो करता है यही काम, कहता है यार कोई मसला नहीं है मैं आपको एक हफ्ते में सिखा दूंगा।
0: करंट ना ला लियो अपने आप।
1: खान साहब करंट तो बचन से तो सीखना है।
0: अच्छा,
1: कि अक्सर होता है ना तार निकल जाती है, उसको लगाने में वो पॉजिटिव नेगेटिव इधर उधर लाती थे, वो और कम खराब हो जाए। तो मेरा दिल करता है कि मैं स्किल्स हासिल करूं,
0: ओके,
1: स्किल्स सीखूं। इसी तरह हमारी एक शॉर्ट हैंड लैंग्वेज है, बड़ी जबरदस्त लैंग्वेज है,
0: मुझे बताएं लाजमी
1: वो सीखें।
0: एक ट्रैक चलाता हूं मैं।
1: हाँ, ट्रैक
0: उसके बाद आपने बताने की शॉर्ट हैंड लैंग्वेज क्या होती है, इसका क्या फायदा है, और इनिशियल बच्चा अगर इसको सीखना चाहे इससे उसको क्या फ़ायदा मिलेगा और उसके फ्यूचर में उसको कितना फ़ायदा मिलेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं इस स्किल के बारे में कि अली रज़ा हमें बताएंगे। बट अभी एक ट्रैक की जानिब हम बढ़ेंगे, उसके बाद हम दोबारा लौट के आएंगे। हमारे साथ रहिए, सुनते रहिए FM 101 एंड द ट्रैक आई एम गोना प्ले अली, इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक। बाज़ दफ़ा ये होता है ना कि कुछ चीज़ें कुछ लोग, कुछ सिंगर्स ऐसे हैं जो गुमनामी में हैं, बट उनकी आवाज़ इतनी प्यारी है, अल्लाह ने उनको गला इतना प्यारा दिया होता है, इतने सुरीले होते हैं और बहुत ज़्यादा दुनिया को पता नहीं होता।
1: रेडियो की दुनिया में देख लें, गुमनाम आरजे अली रज़ा।
0: अली रज़ा वाह, अच्छा है, मुझे अच्छा लगा, ये गुड है, गुमनाम आरजे। अब मुझे लगता है आपका तखल्लुस समय दे रखना पड़ेगा, गुड नाम आर जे अली रज़ा द वन एंड ओनली। अच्छा जनाब, जो ट्रैक मैं चलाने चाह रहा हूँ, दिस इज़ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक एंड वेरी रोमांटिक और बड़ा ही दिलकश है। इसकी पिक्चराइजेशन भी बड़ी अच्छी है और गाना भी बड़ा प्यारा है, प्यारा है अंधियारा बाय तंजीला मुगल की आवाज़ में इस ट्रैक को हम चलाएँगे। एंड यू विल लिसन, इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक फॉर ऑल ऑफ यू, तमाम सुनने वालों के नाम। हियर वी गो।

0: रात पहली है तेरे सुरमई आंचल की तरह, चांद निकला है तुझे ढूंढने पागल की तरह।
1: हाय हाय हाय,
0: क्या गाना है, कहाँ सा गाना, वैसे मजे
1: कमाल है, कमाल है,
0: कमाल गाना
1: और है। मैडम ने तो कमाल इसका हक अदा किया ना,
0: बिल्कुल।
1: और ये तो जब जब सुनते हैं ना तब तब आपको मजा आता है,
0: और रात के इस पहर सुनने का ज्यादा मजा।
1: हाँ, रात के इस पहर में तो सच में आपको पता है ये वाले जो कलाम है ना, ये बड़े मुश्किल हैं, हर बंदा इसको गा नहीं सकता। और मैडम ने तो इसको जिस अंदाज में गाया है, अब यकीन जाने अभी बहुत से लोगों ने इसको बाद में गाया, लेकिन मुझे तो मज़ा मैडम की आवाज़ में आता है, और जिस अंदाज में उन्होंने गाया कमाल है। सर जी, वक्त जो है ना, ये इसका कमाल ये है कि ये बहते दरिया की तरह बहता जाता है, चलता जाता है, ये रुकता नहीं है, और आपको पता ही नहीं चलता। और कहते हैं ना, अच्छा वक्त तो ऐसे ही गुजर जाता है,
0: और ये वक्त आपको किनारे पर लगा देता है।
1: हाँ,
0: बहते दरिया की तरह।
1: अच्छा, वक्त जो है ना बड़ा ज़बरदस्त चीज़ भी है, आप वक्त बहुत बड़ी मरहम भी है, वक्त आपके दुखों का मदावा भी करता है, वक्त के साथ साथ आप चीज़ों को मैनेज भी कर लेते हैं। वक्त को जो है ना आपने अपने हाथ में लेके आना है, वक्त पे आपने काबू पाना है, यानी आपके अंदर अगर टाइम मैनेजमेंट है ना तो यू आर अ सक्सेसफुल मैन इफ़ यू मैनेज योर टाइम। अभी भी मैं बताऊं, अक्सर लोग कहते हैं कि टाइम में बरकत नहीं है, मुझे ऐसे लगता है कि हमारी लाइफस्टाइल में बरकत नहीं बरकत है, हमारा हम जिस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं ना वो बरकत वाला नहीं है।
0: हमने 365 दिन में से 364 दिन सूरज नहीं देखना होता।
1: सूरज ही नहीं देखना, चांद नहीं देखना,
0: सूरज को निकलते हुए नहीं देखना,
1: आसमान नहीं देखना, चांद नहीं देखना, नेचर को नहीं देखना, अल्लाह की जो नेमतें उससे मुस्तफीद नहीं होना, इंजॉय नहीं करना। आप देखें ना, आप, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, आप बाहर 100 बंदों से पूछेंगे यार तुम्हें रात का चांद देखे उसको एंजॉय करते हुए, खूबसूरत मंजर जो होता है, बारिश को एंजॉय किया कि नहीं किया, वो कह रहे यार ना टाइम ही नहीं है।
0: वैसे मैंने तो आज चांद देखा है बुद्धतों के बाद।
1: आए ना करें, मैं शर्मा रहा हूँ मैं शर्मा रहा हूँ, ना करें,
0: शर्मा आ रही
1: है मुझे
0: नहीं शर्माना नहीं है, आपने बिल्कुल ईजी होकर घर जाना है,
1: और आपने छोड़ा ही नहीं कुछ आपने इतना शर्मिंदा।
0: और आपको पता है कि ये मैंने हर टाइम में प्रोग्राम किया हुआ है रेडियो पे।
1: अच्छा,
0: लेकिन 10 से 12 में मैंने कभी शो नहीं किया।
1: रियली?
0: कहते थे इस टाइम ना बड़े बढ़िया हस्तियां करते
1: हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं सर, इट्स एन ऑनर फॉर मी कि आप आज मेरे साथ हैं, ऑल्दो कि आप खमीरी रोटियां और पाए शाए वाला मामला था, लेकिन आपने कुर्बानी दी, था
0: कुर्बानी दे दी
1: आपने, था थी या था कर
0: दिया, कर दिया है,
1: हां दा दिगरी दा,
0: और आप
1: दिगरी दा दिगरी दा,
0: ये आप उसे अलगोड में कर रहे थे, ये मैं सुन रहा था
1: हाँ था तिन तिन था। तो सर मैं, इट्स ऑनर फॉर मी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आप बड़ा प्यारा शो करते हैं, बड़ा मज़ा आता है, मैं जब भी गाड़ी में ट्यून करता हूँ तो मैं रुक जाता हूँ और आपको सुनता रहता हूँ।
0: थैंक यू।
1: सो आज मुझे लाइव आमने सामने बैठ के तो और मज़ा आया,
0: मुझे भी
1: और बड़ा अच्छा लगा। कि उसमें अच्छी बात यह है कि हमारी कॉन्वर्सेशन तो होती रहती, बातचीत होती, तो ऑन एयर आप जब खैर का काम करें ना, कुछ लोगों को मशवरे दें, अच्छी बात कहें, ये सदका जारी होते हैं।
0: सही बात है।
1: तो सर थैंक यू सो मच,
0: आपका शुक्रिया। हाँ साहब बहुत शुक्रिया,
1: सलामत रहें।
0: यकीनन बहुत मज़ा आया आज आपके साथ प्रोग्राम करके, और पता चला कि यार रात को भी शो
1: है ना
0: होता है
1: आपने अपने लिसनर्स को आज मिस किया, बट थैंक यू सो मच एवरीवन जो हमारे साथ हैं। सो अली रज़ा इज़ साइनिंग ऑफ
0: और अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और उनका भी ख्याल रखिएगा जो आपका ख्याल रखते हैं। आरजे अली रज़ा साइनिंग आउट, सेइंग बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने कवान, गुड नाइट, स्लीप टाइट।
1: ओह माय गॉड। और जनाब मैं भी चाहूँगा इजाज़त इसी अपने पन के साथ कि आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, ज़िंदगी ने इतबा की, सांसों ने वफा की, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। चलन अल्लाह ने कवान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।

तो उसमें कुछ पक रहा हो तो उनको खुशबू आ जाती है, या घर में कुछ ऐसा बन रहा हो या कहीं छुपा के कुछ रखा है खाने पीने की चीज़, तो उनको खुशबू आ जाती है। कुछ लोगों के नथने बड़े तेज़ होते हैं और वो स्मेल कर लेते हैं चीज़ों को। तो अगर आपका ये वाला टैलेंट है तो ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा कोई भी टैलेंट आपका अगर है तो, मैंने तो ये मिसाल दी आपको कि जो CV के ऊपर मैंशन नहीं हो सकता आपके, तो कोई ऐसा टैलेंट है सो डू लेट मी नो, मुझे सुन के अच्छा लगेगा और हम जानेंगे कि मेरे लिसनर्स के अंदर कौन से ऐसे हिडन टैलेंट्स हैं, उसको हम प्रमोट भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वक्त आपको नेशनली और इंटरनेशनली सभी लोग सुन रहे हैं, क्योंकि दिस इज 101 इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम को कहते हैं जी 101 इंटरनेशनल, 101 इंटरनेशनल में आपका साथ मेरे साथ रहता है, और साथ देने के लिए आप जाते हैं फेसबुक के ऊपर, लिखते हैं FM 101 चैनल पाकिस्तान, पेज आपको एक मिलता है, उसके ऊपर एक बड़ी ही खूबरू नौजवान की तस्वीर लगी हुई आज। नौजवान कहें ना कहें, लेकिन खूबरू कह सकते हैं आप। कभी कभी यार अपनी भी तारीफ करनी चाहिए, कोई नहीं करता यार हमारी तारीफ, क्यों नहीं करते हमारी तारीफ।

ओके जी, और प्रोग्राम का जो है वो दूसरा पार्ट ऐसा होगा कि जो कॉलर्स मेरे प्रोग्राम में हिस्सा बनेंगे और उन कॉलर्स को जी मैं एक सिचुएशन दूंगा, एक कहानी दूंगा, एक स्टोरी दूंगा और दो लाइंस उसकी मैं बोलूंगा और उन दो लाइंस के बाद स्टोरी को कंटिन्यू वो करेंगे और जब तक वो ऐसे नहीं करते ना तो तब तक मैं उनकी स्टोरी बड़े ही हमाक से सुनूंगा और अगर किसी की स्टोरी मज़ेदार हुई ना तो फिर हम उसको उसकी मर्जी का गाना भी सुनाएंगे, ठीक है? अगर मिल गया तो ठीक है, प्रॉमिस नहीं है, अगर मिल गया वो वाला गाना जो उन्होंने पूछा तो वो वाला गाना उनके नाम का हम प्ले भी करेंगे और उनको डेडिकेट भी करेंगे। और अगर वो किसी को डेडिकेट कराना चाहें तो हम उनको भी डेडिकेट कर देंगे यार, कोई मसला नहीं, आज करेंगे। लो जी कहानियों वाले ना शुरू ही आगे बस लग गई कॉलें। अभी जो पहले वाला पार्ट है ना आप उसके ऊपर फोकस करें और फेसबुक के ऊपर आपने कमेंट करने हैं और कमेंट करके आपने बताना है कि आपका हिडन टैलेंट क्या है और अगर किसी का जबरदस्त का कोई अच्छा सा हिडन टैलेंट हुआ ना तो वो कॉल जरूर करे। अच्छा चलो ये भी रख लेते हैं, किसी का अगर बहुत मजेदार टैलेंट हुआ ना और वो टैलेंट ऐसा हुआ कि जिसको हम दिखा सकें सुना सकें तो हम उसको ऐसा करेंगे कि अपने प्रोग्राम में कभी इनवाइट करेंगे। अपने प्रोग्राम में अगर मैं इनवाइट नहीं करूंगा तो डे टाइम में किसी प्रोग्राम के अंदर उनको इनवाइट कर लूंगा, अगर वो रात को नहीं आ पाएंगे तो खैर उनको प्रोग्राम का हिस्सा बनने का जो है वो मौका देंगे। चलो भाई आज ना बिना अप्रूवल के मैंने आपको ऑफर करा दिया, मुझे लड़ना पड़े भिड़ना पड़े जो भी करना पड़े मैं लड़ भिड़ लूंगा लेकिन आपको मौका जरूर दूंगा। सो जनाब इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस कि जो लोग सुन रहे हैं और उनके अंदर कोई हिडन टैलेंट है और अगर वो हिडन टैलेंट दुनिया को दिखाया जाने के काबिल हुआ तो हम उसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे जी, लाइव हिस्सा बनाएंगे, उनको स्टूडियो बुलाएंगे।

मुझे कहते हैं जी आज के भी, और आपको क्या कहते हैं आप मुझे बता रहे हैं फेसबुक के ऊपर और कॉल करके बता रहे हैं। कॉल करने का जो नंबर है जी वो नोट कर लीजिएगा, 0511111001 इज द डायलिंग नंबर, और उसके साथ साथ आप मुझे 4471 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। एनी, अरे अरे अरे एनी मेरे साथ है, एनी सिंगर साथ है भाई, उसी की समझा।

12:25 है आज 2026 है और हम तो हैं फर्श पे, फर्श पे ही रहना चाहिए ना, अर्श पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अर्श पे पहुंचाने में कोई कसर छोड़ते नहीं है, लेकिन फिर भी रहना पड़ता है, रहना पड़ता है अर्श के ऊपर।

सरगोधा से मेरे साथ हैं जूबिया, और वो कहती हैं कि जी कि मेरा जो अनऑफिशियल टैलेंट है दैट इज कि मैं अपने बेस्टी का दिमाग का ऐसा दही करती हूँ, ऐसा कर सकती हूँ, बस उसको मैं कहती हूँ कि तू पहुंच जाओ अर्श पे, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं होती। अच्छा, ये वाला टैलेंट ना बहुत बहुत लोगों में पाया जाता है वैसे।

0: ठीक है जी। आमना सरवर मेरे साथ हैं इस्लामाबाद से, इरम चौहान है मेरे साथ जी इस्लामाबाद से, हफीफा नूर मुझे सुन रही है जी इस्लामाबाद से, बिस्मा है मेरे साथ इस्लामाबाद से, सुमेरा है मेरे साथ रावलपिंडी से जी, और कोमल है मेरे साथ गुजर खान से, हादिया खान है मेरे साथ जी PWD से।
1: तेरा शुक्रिया, मैं कहां से गुजर गया।
0: तेरा शुक्रिया, अरे सभी का शुक्रिया।

ओके जी, कोमल ईमान आ चुकी है मेरे साथ जी, यूएसए से प्रोग्राम सुन ली है और वो कह रही है कि शो इज द बेस्ट। और तस्वीर आज आपने कमाल लगाई है वैसे। बस कोमल कभी कभार ना मूड अच्छा होता है ना, आज वाकई मेरा मूड बहुत अच्छा है। रियाना खान है मेरे साथ भक्कर से हैं और प्रोग्राम सुन रही हैं जी, प्रोग्राम पसंद कर रही हैं। साइमन सिद्दीकी आ चुकी हैं और कहती हैं कुकिंग इज माय टैलेंट एंड माय पैशन। अच्छा वो क्या है जो आप पकाती हैं साइमा? किसी का दिमाग पकाती हैं, किसी का दिल पकाती हैं, अब क्या पकाती हैं और सबसे अच्छा क्या पकाती है वो जरूर बताइएगा।

अच्छा मैं अभी कमेंट्स पढ़ रहा हूँ और मैसेजेस देख रहा हूँ, तो उसके अंदर बड़े अजीबोगरीब किस्म के टैलेंट्स जो है वो मुझे देखने को मिल रहे हैं और वाकई ये लोगों में होते हैं। अभी एक टैलेंट मुझे किसी ने बताया, मैंने कहा जी कि मैं जिस गाड़ी का नंबर जो है वो पढ़ लेता हूँ और मुझे वो याद रह जाता है। अगर मैं कहीं बाहर निकला हूँ और ट्रैवल कर रहा हूँ और जिस गाड़ी पर मेरी नज़र पड़ जाए और उसकी अगर नंबर प्लेट में मेरी नज़र पड़ गई है तो वो नंबर प्लेट मुझे याद रहती है और कई महीनों तक याद रहती है। अब जरा सोचें कि उनके दिमाग में कितनी नंबर प्लेटें होंगी भाई। कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। अच्छा एक मेरे दोस्त थे वो एयरपोर्ट पे काम करते थे और वो अक्सर जो है वो पासपोर्ट चेक किया करते थे, तो वो बताते थे कि मुझे हमेशा जो मेरे पैसेंजर्स होते हैं जब आते हैं मैं उनके पासपोर्ट चेक करता हूँ तो मुझे मैक्सिमम लोगों के पासपोर्ट नंबर याद हो जाते हैं। कैन यू बिलीव कि पासपोर्ट नंबर जो है वो आई थिंक सो 10 या 12 लेटर्स का होता है, आई थिंक सो कंफर्म नहीं है, लेकिन इतने लेटर्स का होता है और इतने लेटर्स को याद रखना और एक फ्लाइट के अंदर अगर आपका 50-100 बंदा है और आप उस सबके जो अगर पासपोर्ट नंबर अगर देख लें और अगर आपको याद रह जाएं, दिस इज अनबिलीवेबल आई थिंक सो। और इस हवाले से मैंने उनको काफ़ी दफ़ा आजमाया, अभी मैंने उनको बोला कि मेरा पासपोर्ट नंबर क्या है और उन्होंने बताया, और फिर 2 महीने बाद या 3 महीने बाद रैंडमली मैंने उनसे पूछ लिया कि मेरा पासपोर्ट नंबर याद है, कभी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे एग्जैक्टली वही पासपोर्ट नंबर बताया जो मेरा था।

अच्छा, कुछ लोगों को बर्थडेज बड़ी याद रहती हैं और कुछ लोगों को बिल्कुल याद नहीं रहती, और जिनको याद नहीं रहती उनको अक्सर शोहर कहा जाता है ना। अक्सर शोहरों को जो है वो बर्थडेज याद नहीं रहती और इस हवाले से बड़ा प्रॉब्लम रहता है, लेकिन कुछ लोगों को बर्थडेज बहुत याद रहती हैं लोगों की, और बर्थडेज जो है वो कुछ बहुत दिल से मनाते भी हैं, और अगर उनकी बर्थडेज ना मनाई जाए तो वो फिर ना दुआ जनाजा बंद कर देते हैं, है ऐसे भी हैं लोग। अच्छा, कुछ लोग ना एग्जैक्ट मेजरमेंट कर लेते हैं, अगर कोई चीज सामने लगी हुई है और अगर कोई खिड़की है, कोई दरवाजा है या कोई भी चीज अगर लगी हुई है और उसकी मेजरमेंट अगर पूछी जाए तो वो कह देते, नहीं यार ये 10x4 का है, ये 5x10 का है, ये इतने फीट का है, और एग्जैक्टली उनको पता होता है। और अगर वो कहे ना जी ये 10 फिट है, तो नहीं यार ये 10 नहीं है, ये 9.5 है और इसमें कुछ मुझे छोटा लग रहा है ये, अगर उसको मेजर किया जाए तो एग्जैक्टली ऐसा होता है। अच्छा, जब मैं फुटबॉल खेलता था तो अक्सर ऐसा होता था कि कुछ प्लेयर्स जो है वो पोल्स के ऊपर एतराज किया करते थे कि यार ये जो पोल है ये स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है, ये वाला जो पोल है वो छोटा है, वो जो दूसरा वाला पोल लगा हुआ है अपोजिट साइड के ऊपर वो बड़ा है, और अक्सर इस बात के ऊपर जो है वो प्रॉब्लम हुआ करता था। और अक्सर ऐसा हुआ कि कुछ ग्राउंड्स के अंदर जब उन पोलों की मेजरमेंट की गई तो वाकई कुछ पोल छोटे थे, कुछ बड़े निकले। तो कुछ लोगों की आंखों के अंदर ना मेजरमेंट करने वाला टेप मौजूद होता है, और वो इंची टेप जिसको हम कहते हैं ना, इंच नापने वाला, तो वो मौजूद होता है। तो जनाब, आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप पर कोई हिडन टैलेंट है, सो डू लेट मी नो, और कोई ऐसा टैलेंट है जिसको आप सीवी में मेंशन नहीं कर सकते, आज रेडियो पे मेंशन कीजिए, आज 101 पे मेंशन कीजिए, आज केबी के प्रोग्राम में मेंशन कीजिए जी। अच्छा, आज मैंने आपको कुछ ज्यादा इंतजार भी नहीं करवाना, ठीक है। सेकेंड जो प्रोग्राम का जो हिस्सा है वो भी हम साथ साथ कंटिन्यू करेंगे। जो लोग जो है वो कमेंट नहीं कॉल नहीं कर सकते और कॉल पे बात नहीं करना चाहते, वो कमेंट करके अपना हिडन टैलेंट मुझे बता सकते हैं। FM 101 चैनल पाकिस्तान का पेज है जी, उसके नीचे आप एक पोस्ट देखेंगे, एक तस्वीर लगी होगी, उस तस्वीर के नीचे आपने कमेंट करना है और आपकी बात मुझ तक पहुंच जाएगी, उसको मैं प्रोग्राम कैसा बनाऊंगा। और काफ़ी जो है वो कमेंट्स इस वक्त जो है वो मुझे मिल चुके हैं, मैं साथ साथ शामिल भी करता चला जाता हूं। और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 0511111011 के ऊपर। नूरी खान मेरे साथ आए हैं जी अहमदाबाद से और प्रोग्राम सुन रहे हैं। जैनी है मेरे साथ जी और कहते हैं कि जैनी कहते हैं जी कि मेरा जो टैलेंट है वो ज्यादा सोना है, मैं बहुत बहुत सोता हूँ। नहीं, इसको टैलेंट नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं, मेरे पास वो ना वो वाला बटन नहीं जिसमें आपके नहीं आता पी टू, बीप नहीं बजती होती, बस वो समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ।

0: अच्छा यार, बड़ा मज़ा आएगा अगर कोई स्टोरी सुनाने वाला आएगा ना, तो बहुत मज़ा आएगा। और जो कॉलर जब भी आ रहे हैं, मैं उनसे से चाहूँगा कि वो स्टोरी जो है, मैं उनको दो लाइंस दूँ और फिर वो आगे स्टोरी सुनाएं, तो मज़ा आएगा फिर, है ना? मज़ा आएगा। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप बताइए, आप खैरियत से? कहाँ से बात कर रहे हैं? सुदियोती। ये कहाँ पे आतिफ?
1: ये रालाकोट साइड के साथ ही।
0: अच्छा, वहाँ पे भी अब्बासी होते हैं
1: जी।
0: अच्छा, तो आतिफ अब्बासी साहब बताएं, फिर स्टोरी सुनाएंगे मुझे?
1: आप सुना दे।
0: क्या सुनाऊं?
1: अधिका कैली का सॉन्ग है होना बाज।
0: वो तो देखो, गाने की फरमाइश तो तब पूरी होगी ना अगर आप स्टोरी सुनाएंगे और टैलेंट बताएंगे अपना।
1: कोई नहीं
0: है। चलो फिर, चलो फिर, चलो फिर, ठीक है ठीक है, सो जाओ। ठीक है,
1: शुक्रिया।
0: सत्तू पीना जरूर।
1: हाँ,
0: सत्तू पी लो, ठीक है? गर्मी है ना बहुत ज्यादा।
1: गर्मी कोई नहीं, सावन का मौसम है।
0: हाँ, सावन के मौसम में सत्तू ज्यादा पीना चाहिए वैसे।
1: बारिश भी हुई है, मौसम ठीक है।
0: चलो, मौसम एंजॉय करो फिर।

अच्छा जी, आमना मुझे कहती हैं कि मेरा जो है वो मेरा भी ये मसला है कि अगर मुझे कोई विश ना करे, बर्थडे विश ना करे, तो मैं रिश्ता खत्म कर देती हूँ। अरे कमाल है आमना, अरे इतनी क्यूरियस हम अपनी बर्थडे के मामले में कि अगर उनको कोई विश ना करे तो वो कहती हैं कि मैं रिश्ता ही खत्म कर देती हूँ।

0: माजिबी मेरे साथ हैं जी, और माजिबी कहती हैं कि इट्स अ नाइस प्रोग्राम और मेरा टैलेंट जो है वो स्केचिंग है। अरे माजिबी कुछ बताइए, कुछ दिखाइए कि क्या स्केच करती हैं आप, फिर हम फैसला करेंगे कि आपकी मर्जी है गाना लगाएं या ना लगाएं। कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम
1: जी। अस्सलाम वालेकुम, की चन चढ़ा देते।
0: क्या हाल है मारिया, कैसी हो?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मेरे अंदर भी एक टैलेंट है, मैं बुर्के की आवाज बड़े मजे से निकाल लेती
0: हूँ। बड़े मजे से निकालती हैं
1: आप?
0: अच्छा चलो फिर निकालो। अरे वाह वाह वाह मारिया, पहले वाला अच्छा था, एक दफा फिर पहले वाला। कौ कौ का अच्छा नहीं था वो पहले वाला? अरे कमाल कमाल कमाल, बाकी अनबिलीवेबल।
1: अभी तो रात है ना, मुर्गी की आवाज में सही से निकाल नहीं सकती। एक दिन मैंने ना सही वाली सही करके मुर्गी की आवाज निकाल ली। यकीन करो, मुर्गा पर खिलार के मेरे पीछे आगे खड़ा हो गया। मैं सीख रही हूं, अल्लाह पहले अम्मी करानी सॉरी।
0: अच्छा तो निकालो, हमने सुननी है वही वाली, सुनाओ। नहीं नहीं, ये असल में रात को मुर्गे ही सुन रहे होते हैं मेरा प्रोग्राम। चलो सुना।
1: तुसी चाहंदे मेरे पीछे कोई मुर्गा लग जाए? ना ना ना ना ना ना, ये काम नहीं करना।
0: नहीं नहीं कोई नहीं आने,
1: बंद नहीं तो मेनू कोई डर नहीं।
0: नहीं नहीं कोई नहीं आने, कोई नहीं आने, आप सुना दो, आप निकाल लो।
1: गले से अटक गया मुर्गा।
0: ये मुर्गी वाली ना, मुर्गी वाली आपने बताया था।
1: नहीं मुर्गी वाली अभी सही नहीं करके निकालूंगी। हाँ। मैं नेक्स्ट टाइम किसी और टाइम। हाँ। बाकी प्रोग्राम अच्छा हो रहा है और सो सॉरी, आज के बाद मैंने एक फैसला किया।
0: हाँ।
1: तो मैंने ना इस्लामाबाद के प्रोग्राम में गाना नहीं गाऊंगी। मुझे उस दिन एहसास हुआ कि मेरी आवाज इतनी बेसुरी है, आपने नहीं कहा था।
0: हाँ।
1: मगर शान भाई और अते भाई साहब जो कह रहे थे ना, मुझे यकीन करे, मुझे उस दिन महसूस हुआ कि मैं ना गलत कर रही हूँ। नहीं, नहीं गाना चाहिए।
0: नहीं नहीं मारी ऐसा नहीं था।
1: अच्छा
0: अच्छा सुनो ना, उस दिन कौन था? जिशान नासिर बैठा था, और कौन था?
1: और शान भाई थे।
0: शान
1: और
0: था। अच्छा अच्छा ओके ओके, तो मतलब शान भाई कह रहे थे कि भाई आवाज प्यारी नहीं है। वो हुआ ये था ना, अच्छा सुन तो सही ना, अच्छा सुनो तो सही ना। अरे मारिया सुन, अच्छा सुन तो लो ना मेरी बात। जब हमारा प्रोग्राम एंड हुआ था ना, तो उसके बाद हम गए थे एक जगह पे, कैफे पे बैठ के खाना खाने, ठीक है? तो वहां जाके मुझे शान भाई ने और जिशान नासर ने और सब ने बताया था कि आज उनके कान बंद है। हाँ, उस दिन मसला ये था कि उनके कान बंद थे ना, तो उनको आवाज आ नहीं रही थी, आवाज इधर से आ रही थी और उनको सुनाई कहीं और से दे रही थी। तो दैट्स वाई जो है ना, वो उनने कहा कि जी आपकी आवाज अच्छी नहीं, वरना आपको पता है मेरे प्रोग्राम में आप जब भी आती है, मैं तो गाना सुने बगैर आपको जान
1: नहीं
0: देता।
1: नहीं, आपकी बात नहीं हो रही, आप मैंने आपकी बात नहीं की। वैसे मैं गुस्से गिले से बात नहीं कर रही, मतलब मैं ये मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने मतलब मेरी कोई ना कोई बात मुझे बताई है, ताकि बतानी चाहिए, पता चलना चाहिए। मैं ऐसी बेसुरी सी आवाज में और शो में मैं
0: अच्छा चलो एक फैसला करते हैं। अच्छा अच्छा सुनो तो सही ना,
1: ऐसे नहीं होता ना।
0: अच्छा सुन लो, आज फैसला करा लेते हैं, ये इतनी सारी दुनिया सुन रही है, इन सारों के ऊपर फैसला छोड़ते हैं। अभी एक अच्छा सा गाना सुनाओ और हम फिर इनसे पूछेंगे, कमेंट करके बताएंगे मुझे फेसबुक के ऊपर, अगले कॉलर से भी पूछेंगे कि मारिया कैसा गाती है, ठीक है? फैसला हो जाएगा।
1: सलामत रखे, नहीं आज मैं गाना नहीं सुनाऊंगी।
0: हाँ।
1: तो मैं आपके साथ भी, और मुझे उनके साथ भी कोई गिला नहीं है।
0: अच्छा चलो माइया सुना दो। अच्छा माइया सुना दो, गाना नहीं सुना रही, माइया सुना दो।
1: माइया सुना दो।
0: हाँ।
1: माइया, अच्छा तुहाडे ते सुनावा कभी लाहौर आया?
0: हाँ मैं आया था लाहौर, कई दफा आया हूँ लाहौर।
1: चलो फिर तुहाडे ते सुना देनी
0: आ। चलो सुनाओ।
1: सत्यंग गे सर कोला
0: मारिया, ये दो जुमलों से तो किसने फैसला करना है यार, क्या मतलब मिनते करा करा के सुनाओगी हमें?
1: नहीं नहीं ऐसा नहीं है कोरम भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
0: हाँ।
1: यकीन करे मैं अच्छा अच्छा ने सुने।
0: सुनाओ
1: सुनाओ चलो
2: गाना सुना दो, माया नहीं आ रहा तो गाना सुना दो। बस रह गई है ना फिर
1: बाकी गला सीखने में आपको महसूस भी हो रहा होगा। मैं नक्शन जरूर सुनाऊंगी, मुझे कोई भी गिला नहीं है, यकीन कर मैं दिल से कह रही हूँ।
2: अच्छा।
1: और अल्लाह से गला मेरे भाई को सलामत रखे, तमाम समय नो सर तमाम समय नो समाता सलाम, खास करके मेरा भतीजा सुन रहा है, बहुत बहुत सलाम।
2: चलो वालेकुम सलाम जी।

0: ओके जनाब, वेलकम बैक वन इंटरनेशनल। 1:12 और 25 जुलाई के भी आपके साथ और आप मेरे साथ, और अब जो है वो बहुत सारे कॉलर्स मेरे साथ मौजूद हैं, तो मैं अब उस कॉलर को ही इंटरटेन करना चाहूँगा कि जो मुझे स्टोरी सुनाएगा। और अगर आप मेरे साथ कॉल पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप स्टोरी सुनाना चाहते हैं तो ज़रूर कॉल कीजिए। अगर आप स्टोरी नहीं सुनाना चाहते तो फिर प्लीज़ जो है वो आप उनको मौका दीजिए कि जो स्टोरी सुनाना चाहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं सुनना चाहता हूँ कि लोग स्टोरी सुनाएं, ठीक है, और कम से कम एक शख्स तो ज़रूर स्टोरी सुनाए। तो जिसने स्टोरी सुनानी है वो कॉल करे और जिसने नहीं सुनानी वो थोड़ा वेट कर ले। ओके जी, कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम करम भाई, कैसे हैं?
0: बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। इरफान साहब कैसे हैं आप?
1: जी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। तो मेरे पास तो एक टॉयलेट ही है, अगर आप सुनना चाहें तो ठीक है।
0: क्या है आपके पास?
1: वो क्या कहते हैं, टॉयलेट?
0: टॉयलेट है आपके पास?
1: जी मेरे पास टॉयलेट।
0: तो टॉयलेट आप घर में रखे हैं, मुझे क्यों दे रहे हैं?
1: तो
0: मेरे पास घर में है भाई, अपना टॉयलेट अपने पास रखो।
1: यार
0: मेरे अल्लाह अल्लाह माफी दे भाई, मुझे टॉयलेट नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, मेरा है मेरा बना।
1: आपको ना दो तीन आवाजें निकाल के सुना।
0: अच्छा चलो सुनाओ, टॉयलेट सुनाओ अपना।
1: तो आंटी जी को वालेकुम सलाम कहूंगा तो मुर्गी की आवाज मैं निकालता हूँ
0: जी, निकाले।
1: तो फिर अंडा दे लेती है ना, जब अंडा दे लेती है पता कैसे कर दिया?
0: ओके तीसरी आवाज।
1: दूसरी आवाज उसमें ना थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
0: हाँ हाँ बताएं।
1: आपने कहीं जा रहे हैं तो आपको ना एक डॉगी सामने आता है, आपने उसको डांटना है।
0: अच्छा मैंने डांटना है उसको,
1: फिर वो आपको ना मतलब काटने को दौड़ेगा, आपने कहना चल, तो फिर देखना वो क्या करता है। चले आप कहीं जा रहे हैं, आपको डॉगी ने रोकना है।
0: अच्छा चलो डॉगी ने रोका। ओए हट जा, हट जा, हट हट हट हट हट, कुरे कुरे कुरे। अरे मालिक, वाह जी वाह वाह वाह, इनके लिए गाना होना चाहिए। वैसे वैसे इनके लिए गाना होना चाहिए।
1: तो एक और बात है,
0: हाँ
1: जब बिल्ली भूखी होती है ना,
0: हाँ
1: पता कैसे कर दिया?
0: हाँ वाह वाह वाह वाह वाह, कमाल हो आप, कमाल हो जनाब।
1: तो खुरम भाई आवाजें तो काफी थी, लेकिन पता है क्या, दो तीन आवाजें मैंने ना सही रिहर्सल की, को मतलब शो में ना ऐसा ना हो कि बेइज्जती ना हो, लेकिन यकीन करता हूँ आपको भी और सुनने वालों को भी अच्छी लगी होगी। तो दो काम
0: नहीं, मजा आया यार।
1: स्टोरी जो है ना यार अब मैं नहीं सुना सकता क्योंकि मैंने ये बता दी है।
0: अच्छा चलो थैंक यू यार, बहुत मजा आया, मजा आया आपकी कॉल का, मजा आया। कुत्ते वाला तो कमाल था भाई वैसे। अस्सलाम वालेकुम, कौन है? हेलो,
2: वालेकुम अस्सलाम, शुक्र है खुरम भाई, दूसरी ऐसे नंबर तो काल चुकी है जनाब।
0: चलो जी चुक लीजिए जी, दसो जी कहानी सुना सो नहीं सुना दे।
2: दूजे नंबर तो काल लेती जांदे है, नंबर तो काल नहीं चुके 051 वाले तो।
0: अच्छा नहीं नहीं चुक रहे हैं, मैं तो ही चुकना जी।
2: नहीं वो ताडा एक दूसरा नंबर है ना, 92 वाला।
0: अच्छा
2: वाह। ਦੂਸਰਾ ਟੈਲੈਂਟ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ।
0: ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਮਾਲ, ਮਤਲਬ ਆਪਕੇ ਨਥਨੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਕਾ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਦੋ ਹੋ ਗਏ
2: ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ।
0: ਤੀਸਰਾ ਦੱਸੋ
2: ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
0: ਚਲੋ ਜੀ ਸੁਣਾਓ ਜੀ।

अच्छा जी, फेसबुक पे आने से गिले हो रहे थे जी कि फेसबुक पे मेरे आप कमेंट शामिल नहीं कर रहे, तो मेरे साथ बख्तावर कियानी है जी और वो प्रोग्राम को पसंद कर रही हैं और कहती हैं क्या हाल है आपके, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आसिफ निसार मलिक है मेरे साथ जी, सरगोधा से प्रोग्राम सुन रहे हैं जी। आसिफ साहब बहुत शुक्रिया।

0: एंड हफीफा नूर है मेरे साथ जी, कॉलर है मेरे साथ, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अच्छा आप उधर सुन लें जरा रेडियो पे, मैं दूसरे कॉलर को मौका दे दूं, फिर आपने दोबारा करनी है कॉल, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई, ठीक ठाक है जी आप?
0: बिल्कुल ठीक ठाक जी, आप बताएं, आप खैरियत से हैं सर?
1: आपकी दुआएं जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है आपका, तो मैं कभी कभी बात कर लेता हूँ।
0: बहुत शुक्रिया।
1: तो मजा तो आज ये है ना कि आप मुझे पहचाने।
0: सर आप बात कर रहे हैं अपना हाँ वही,
1: तो चले आप नहीं पहचाने, दो निशानियां बताते फिर बताए।
0: चले, एक निशानी ये है कि आपके दो कान हैं और एक निशानी नहीं, आपकी ये दो आंखें हैं आपकी, ठीक है?
1: नहीं नहीं, एक निशानी है कि कभी हम मिले नहीं आपस में।
0: अच्छा,
1: दूसरी निशानी ये, हमने देखा नहीं आप एक दूसरे।
0: आए हाय हाय हाय, दोनों सच्ची हैं, दोनों सच्ची हैं, मान लिया
1: जी। अभी नहीं पहचाना?
0: नहीं नहीं पहचाना जी।
1: अच्छा, तो शाहबाग से आते हैं जी मोहम्मद शहजाद शाह।
0: अरे वाह अरे वाह, कमाल कमाल कमाल, शाहबाग से हैं जी। ओके जी, तो सर बताइए क्या क्या बताने आए हैं टैलेंट?
1: ये आपने जो टॉपिक ये प्रोग्राम मौजूद रखा है ना, तो वो कहते हैं हजारों शिकवे हैं, क्या क्या बताऊं, कहां तक सुनोगे, कहां तक सुनाऊं।
0: वाह,
1: जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे, जो जख्म मिला फूलों से मिला, कांटों से शिकायत कौन करे।
0: वाह कमाल,
1: ये जो स्टोरी है ना, ये स्टोरियां बहुत गमी भी होती है स्टोरियों में, खुशी कभी कभी आती है स्टोरियों में
0: जी,
1: ज्यादा गमी आती है।
0: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, थैंक यू सर, आपका बहुत शुक्रिया।
1: आपका भी शुक्रिया, और जितने बहन भाई आ रहे हैं सबको सलाम।
0: वालेकुम
1: तो सलाम। एंड पे मैं एक मुर्गी की आवाज निकालता हूँ, मुर्गी की
0: जी जी,
1: वो कैसे बोलती
0: है जी, चलो थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर किशोर आरिफ मेरे साथ है जी, प्रोग्राम सुनिए जी। हानिया है मेरे साथ जी, कश्मीर से प्रोग्राम सुन रही है। हानिया वादी कश्मीर, सनाउल्लाह है मेरे साथ जी, और ये सुन रहे हैं मुझे कतर से। गाना मजेदार है वैसे, सुनाते हैं आपको, पूरा सुनाते हैं।

0: ओके जनाब, 1:38 हैं और 25 जुलाई है 2026 है, और आप लोग मुझे अपने हिडन टैलेंट्स बता रहे हैं। और बड़ी एक अजीब सी बात है और बड़ी मज़ेदार बात भी है कि शायद कि ह्यूमन साइकोलॉजी भी है कि जितनी बातें मैंने आपको मिसालें दे दे के आपको मैंने बताई हैं, आपने उन्हीं बातों के ऊपर बात की है कि मुख्तलिफ आवाज़ें निकालना, तो आवाज़ें ही निकाली जा रही हैं। और नथनों के हवाले से मैंने बात की कि अगर आपको खुशबू आ जाती है खाने की तो सिर्फ वही टैलेंट निकल रहा है। नंबरों के याद करने की बात की तो वही टैलेंट सिर्फ निकल रहा है, उसके अलावा कोई टैलेंट मुझे अभी तक आपने दिखाया नहीं है। सो आई एम वेरी ईगरली वेटिंग कि आप कोई ऐसा टैलेंट दिखाएं जो वाकई में मुझे कोई यूनिक लगे कि यस वाकई ये एक यूनिक टैलेंट है। और उसके साथ साथ आप स्टोरीज़ के ऊपर मेरे से बात कर रहे हैं, लेकिन स्टोरी मुझे अभी तक कोई सुना नहीं रहा। स्टोरी सुन रहा हूँ मैं, अस्सलाम वालेकुम, सुनना चाहूँगा।
1: भाई ठीक है,
0: बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप बताइए आप कैसे हैं।
1: अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। परवेज साहब इस्लामाबाद से
0: जी। परवेज साहब कहानी सुनाएंगे?
1: कहानी मैंने जो 1990 की बात है सर, जब मैं कराची गया।
0: सर मैं जो कहानी सुनना चाहता हूँ आप वो क्यों नहीं सुनाते, अपनी कहानियाँ सुनाते हैं, क्या मसला?
1: ये आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे।
0: अच्छा चलें सुनाएं।
1: एक शेर के साथ आगाज़। इरादे जिनके पुख्ता हूँ, इरादे जिनके पुख्ता हूँ, नजर जिनकी खुदा पे हो, लतम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते।
0: कमाल।
1: सर घर से गांव से मैं आया पिंडी से, तो पिंडी तो यहाँ से मैं बस में बैठा, मेरी जेब में 170 रुपए थे। सन 1990 की बात है सर। मेरा पूरा यकीन था, वहाँ मेरे अपने रिश्तेदार थे करीबी, उस समय आपको पता है सर मोबाइल का दौर नहीं था, खत वगैरह लिखते थे, उन्होंने मुझे एड्रेस बताया हुआ था। तो बस में मेरे साथ बहुत अच्छे लोग मिल गए। मैंने तो फरकाबाद या पंद्रह सौ मेरे पास किराया था, आगे मैंने मेरे पास किराया नहीं था, तो बाकी एक लड़का बैठा हुआ था, उसने बोला मैं बोला यार कराची लाजमी जाना है मैंने। उसने अपनी जेब से पता नहीं 1700 रुपए दिए, तो राजकोट में उतरा, तो वहां से फिर वहां भी मेरे पास तो किराया नहीं था, 1.25 रुपए मेरी जेब में थे। वहां से मैं गया कायदाबाद ये लांडी की तरफ, वहां से मैं जो जिस तरह उन्होंने मुझे एड्रेस बताया तो वहां से मैं आगे जा रहा था, तो होटल में दो तीन रिश्तेदार मेरे करीबी बैठे, वहां से मैं तकरीबन 100 फुट आगे चला गया, तो फिर उन्होंने आवाज दी मुझे, तो मैं फिर वापस गया उनके साथ मिला।
0: अच्छा प्रोफेसर जरा शॉर्ट कीजिएगा, शॉर्ट कीजिए।
1: कहते हैं कि फिर मैं दूसरे दिन काम पे लग गया, कराची गरीबों की माँ, तो इंसान अल्लाह की तवक्कुल पे निकल जाए ना सर, तो अल्लाह की मदद आ जाती है। एक और अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे सलाहियत दी है, नमाज में ये जो है ना अल्लाह का हुक्म समझ के अदा करता हूँ कुरान पाक की तिलावत। भाई को सर में दर्द हो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है, तो ना 20 मिनट में उसको सर आराम आ जाता है, ये मैं उसको दम करता हूँ।
0: चले माशाल्लाह,
1: दैट्स ग्रेट। आप क्या कह रहे थे सर?
0: मैं आपको सुनाता हूँ, आप सुनिए ठीक है।
1: जी जी जी,
0: थैंक यू जी परवेज साहब। मैं सुना ही तो रहा हूँ परवेज साहब पिछले 2 घंटों से, कभी आपको सुनाता हूँ मैं गाने, कभी मैं आपको लोगों के किस्से, कभी कोई समझदारी की बात है, कभी कोई बेवकूफी की बात है।

0: चलो अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ एक गजल। मुनीर नियाजी कहते हैं, कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ तेरा लहजा भी सर्द था,
1: दिल मेरा चुरा कर वो
0: आग लगी जो दिल में तो
1: चुरा बैठे
0: उठने लगा धुआं सा। माजी पर पछताना क्या, हाल से मुंह को मोड़ना क्या, गुजरी बातें याद दिलाकर दिल को और दुखाना क्या। दुनिया ऐसी है, ये दुनिया तो ऐसी है, आने वालों को देखे जाने वाले लोगों के पीछे कौन यहाँ रोता है। ये दुनिया तो ऐसी है, आने वालों को देखे जाने वालों के पीछे कौन यहाँ रोता है। उससे मिलकर हमने देखा कितने तन्हा थे हम लोग, उससे मिलकर हमने देखा कि कितने तन्हा थे हम लोग, जिंदगी के सफर में कितने अकेले थे हम लोग। शाम हुई तो साए भी साथ छोड़कर भाग गए,
2: याद करोगे मेरी वफाए, याद करोगे।
0: शाम हुई तो साए भी साथ छोड़कर भाग गए, हमने तो समझा था कि ये भी है हमारे दर्दमंद। रस्ते में हर एक से पूछा, तूने देखा है इसको,
1: और किसे बर्बाद कर,
0: लेकिन किसी ने कुछ ना बताया, सबके सब थे बेबस और जद। रस्ते में हर एक से पूछा, तूने देखा है इसको, लेकिन किसी ने कुछ ना बताया, सबके सब थे बेबस और जर्द। वक्त की इस बहस में आखिर जीत हुई है किसकी, यहाँ सारी उम्मीदें टूट गई हैं, रह गया है बस एक ठंडा सा दर्द।
1: मेरा चुरा कर वो क्यों आंख चुरा बैठे,
0: हाय कितना अपना लगता है, कितना पराया लगता है, ऊपर से तो चुप है लेकिन अंदर एक तूफान है सर्द।

0: कहानी सुनाने वाला कोई नहीं मिलता, तुम ढूंढते हो सानी।
1: जो तेरी जगह बैठे
0: है कौन भला इतना जो कहानी सुनाए मुझको।

0: किसी एक ने भी मजेदार कहानी नहीं सुनाई। आज ये अरमान मैं अपने दिल में लेकर यहाँ से उठने लगा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉलर है। हेलो,
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
0: अरे हमीद गुल साहब आए। हमीद गुल साहब कैसे हैं आप?
1: ठीक है, खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह।
0: आज देखे मेरा हाफिजा कितना कमाल है ना, क्यानी साहब को मैंने क्यानी साहब कहा, आपको हमीद गुल साहब का।
1: नहीं, हो जाता है कभी कभी आपका हाफिजा डिस्टर्ब
0: हो जाता है, कभी कभी ठीक हो जाता है।
1: आप ठीक हैं? खैरियत से?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: क्या लेके आए हमीद गुल साहब?
1: वो रहमान फारिस ने कहा था कहानी खत्म हुई और ऐसे खत्म हुई लोग रोने लगे तालियां बजाते
0: हुए। हाय हाय, कहानी खत्म हुई और ऐसे खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते बजाते। अरे कमाल।
1: तो ऐसी कहानी, तो कहानीकार जो है वो आज जो रैंडम एक गुफ्तगू हो रही है उसमें कहानी को लेके चल रहे हैं, तो बजाय इसके आप वो मैं सुनता था कभी एफएम पे कि जहाँ से छोड़ी जाती थी बात वहां से ऐड की जाती थी, वो एक मुकम्मल कहानी की सूरत या उसमें से कुछ बात निकल आती थी। अगर आप मुझसे पूछें तो शायद मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
0: नहीं, आप मुझे लगता है अमीदुल साहब, मेरे जितने कॉलर्स आए हैं ना आज, मुझे लगता है कि वो सिर्फ आप ही हैं जो कहानी बना सकते हैं।
1: नहीं, कहानी बनाना उसके पीछे भी थोड़ा सा माहौल हो, थोड़ा सा डिजाइन का और कोशिश करते हैं।
0: अच्छा चले, मैं आपको दे दूं फिर चैलेंज।
1: नहीं, चैलेंज तो हम नहीं लेंगे, हम आपकी बात लेंगे।
0: अच्छा,
1: चैलेंज को अगर ले लिया तो फिर चैलेंज तो फिर आपको पता है एक मिनट में चैलेंज कैसे हो सकता है। अगर मुझे समझ आ गई तो मैं बात जरूर करूंगा।
0: चले, मैं इस तरह कर लेता हूँ, कि मैं आपको तीन स्टोरी लाइन्स देता हूँ, ठीक है? उनमें से आपको एक आध चुन लें, जो अपनी मर्जी से चुन लें। ठीक है, पहला ये है कि 10 साल बाद एक पुराना दोस्त एक अनजान जगह पर मिलता है, लेकिन वो हमीद गुल साहब को पहचानने से इनकार कर देता है। पहला ये हो गया। दूसरा, रात के सन्नाटे में छत से एक ऐसी आवाज आती है जो रोज ठीक 1:50 पे शुरू होती है।
1: आज 50 हो गया, इसका मतलब है घड़ी पे।
0: जी, आज आपने हिम्मत करके छत पर जाने का फैसला कर लिया और आपने वहां जाकर देखा कि वो आवाज आगे आपने कंटिन्यू करना है, ठीक है? और तीसरा है कि आप किसी बहुत ही जरूरी इंटरव्यू या मीटिंग के लिए जा रहे थे और रस्ते में गलती से किसी और की गाड़ी में बैठ गए।
1: किसी और की गाड़ी में?
0: हाँ, होता ही है ना कि अक्सर लोग कैब बुक कराते हैं ना, और किसी और के लिए कैब आई होती है और किसी और कैब में बैठ जाते हैं, और फिर आगे कहानी क्या होती है और आप किसी और जगह पे पहुंच गए। ये हुआ ऐसे था, चले मैं आपको एक किस्सा ऐसा भी हुआ था, दो किस्से आप याद रखिएगा, मैं आपको दोबारा भी सुना दूंगा अमीर गुल साहब।
1: एक किस्सा मेरे बेटे का जो ससुराल है उन्होंने गाड़ी बुक की और वो इसी तरह उनके साथ हुआ। उन्होंने हमारी तरफ आना था लेकिन वो उनको कहीं दूर ले गया था वो शख्स।
0: अच्छा,
1: तो फिर उसने कहा कि ये तो वो जगह नहीं है करके। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी आप इससे मेरी बात करवाए, तो वो कहानी बन गई थी।
0: वाह, चले अच्छा ये कहानी भी आप मुझे सुना सकते हैं। खैर, मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ, मेरे पास जो किस्सा है वो मैं भूल जाऊंगा। एक बड़ी मशहूर शख्सियत थी पाकिस्तान की गुजरी, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उन्होंने एक जगह पे किसी इनॉग्रेशन पे जाना था और उनकी बेगम ने भी एक स्कूल के फंक्शन के ऊपर जाना था, और जब वो घर से निकलने लगे दोनों तो प्रोटोकॉल में जब गाड़ियाँ लगी तो जो स्कूल जाने वाली गाड़ी थी उसके अंदर परवेज मुशर्रफ साहब बैठ गए, और जहां परवेज मुशर्रफ साहब ने जाना था वहां उनकी बेगम बैठ गई। और जब वो वहां पे पहुंचे तो उनको पता चला कि ये दोनों स्विच कर गए। तो खैर, वो बड़ा मशहूर किस्सा था कि परवेज मुशर्रफ साहब ने कहा कि अब मैं बच्चों के साथ इनॉग्रेशन ही करूंगा और वो मेरी जगह पर मीटिंग कर लें, या मेरी जगह पर वो जहां पर मैंने जाना था वो वहां पर अपना इनॉग्रेशन कर लें। तो ये बड़े लोगों के साथ भी हो जाता है।
1: आपने कहानी आसान कर दी।
0: हाँ,
1: ये तो फिर बड़ी आसान होगी।
0: अच्छा चले, अब ये तीन कहानियां हैं, इन तीनों कहानियों में से कुछ एक सुनाइएगा। एक तो आपको मैंने ये सुना दी, एक रात 1:51 पे आपको छत पे जाना है, वहां क्या देखा आपने, और तीसरी बात मैंने आपको क्या बताई थी कि 10 साल बाद एक पुराना दोस्त एक अनजान जगह पर आपको मिलता है, लेकिन वो आपको पहचानने से इनकार कर देता।
1: इसी कहानी को लेकर चलते हैं जो आपने ऐप की बात की।
0: जी,
1: मुझे सुबह किसी मीटिंग में जाना था और मैंने एप्लीकेशन से गाड़ी बुक की। मेरे घर के सामने आके गाड़ी खड़ी हुई। मैंने उसने इशारे से मुझसे पूछा कि मैंने फोन पे जो गाड़ी लेट हो गई थी, तो मैंने फोन निकाला। उसने इशारे से कहा कि आप हैं, मैं समझा शायद भी ये वही गाड़ी वाला है। मैंने उसका नंबर नहीं देखा और मैं उसके साथ गाड़ी में बैठ गया। मैंने कहा चलो मुझे जल्दी जाना है। वो चलने लग पड़ा। जब वो गाड़ी चली और मैं अपनी फाइल निकाल के और देखने में मसरूफ हो गया कि जहाँ मैंने इंटरव्यू के लिए जाना है, मैंने आज क्या बात करनी है वहां पे जाके, मैं मसरूफ रहा काफी देर बाद। जब मैंने देखा तो मैंने कहा ये तो वो रास्ता ही नहीं है। मैंने कहा भाई आप किस तरफ जा रहे हैं? उन्होंने कहा जहाँ की आपने लोकेशन डाली है। मैंने कहा जी मैंने तो कहाँ की लोकेशन डाली है? उन्होंने कहा जी आपने F6 की लोकेशन डाली है। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने तो F6 जाने नहीं, मैंने तो पिंडी जाना था। मैंने तो वहां जाने ही नहीं है, आप तो इस्लामाबाद की तरफ नहीं जा रहे हैं। मैंने कहा ये देखिए आपने, मैंने कहा नहीं जी ये, मैंने जब अपने मोबाइल से देखा तो मैंने कहा शायद एक उसी गली में दो आदमियों ने गाड़ी बुक की और मेरी जो गाड़ी जो मैंने बुक की थी सेम वही कहानी उस शख्स के साथ भी शायद पेश आई है।
0: कमाल जी कमाल सर, आप हो गए हैं, कामयाब हो गए हैं। आपके लिए बहुत सारी ढेर सारी तालियां, जिनकी आवाज आपको सुनाई नहीं देगी लेकिन आप महसूस कीजिएगा। और आप मुझे गाना बताइए, आपकी मर्जी का, हम गाना चलाएंगे।
1: गाना मैं मेरी मर्जी का जो है वो कोई भी पुराना लगा दें।
0: आप नूर जान का सुना दें आपको।
1: आज मैं एक आपको एक छोटी सी दो लाइने सुना दूं, कहानी नहीं है, कुछ शेर भी नहीं है।
0: जी जी,
1: चलें किसी नेक्स्ट शो में सुनाएंगे। गाना कोई भी आप लगा दें।
0: मैं आपको आपको नजीर कियानी साहब के नाम करते हैं जी। हम नूर जहां का ये गाना और वापस आएंगे और उसके बाद जो है वो मजीद एक कॉलर में लूंगा और उसके बाद जाऊंगा जी। और नहीं सॉरी, हमीद गुल साहब बहुत शुक्रिया आपका। हमीद गुल साहब, आपके नाम ये गाना नूर जहां साहब।

0: ओके जनाब, वक्त रुखसत हुआ चाहता है, बहुत करीब है वक्त रुखसत, और एक कॉल में प्रोग्राम में लास्ट कॉलर प्रोग्राम में शामिल करूंगा जी, और उसके बाद फिर आपसे इजाजत चाहूंगा। आखिरी कॉलर मेरे प्रोग्राम के कौन है जी, लेट मी चेक। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी। जनाब कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं दुआ बात कर रही थी पिशावर
0: जी। दुआ, क्या हाल है? आप प्रोग्राम की आखिरी कॉलर हैं, यू आर द लकी कॉलर।
1: हाँ, मैंने इतने कॉल की आपने उठाया।
0: कितनी दफा मिलाया है दुआ आपने?
1: इतनी ज्यादा 15 दफा तो मिलाया होगा।
0: 15 दफा? सिर्फ 15 दफा?
1: हाँ।
0: आपके आपके साथ बहुत सारे बहन भाई ऐसे हैं जो 1500 दफा मिलाते हैं फिर मिलती है कॉल। चलो, आपका कॉल हमने उठा लिया। क्या बात थी दुआ जो आप कहना चाहती थी और आपने 15 दफा कॉल मिलाई?
1: भाई आप कैसे हो?
0: मैं अच्छा हूँ,
1: बस मुझे आपका प्रोग्राम में हमेशा ही सुनती हूँ, तो मैंने कहा मैं एक दिन जरूर कॉल करूंगी।
0: अरे वाह वाह वाह,
1: बात करूंगी।
0: तो दुआ बहन क्या करती है?
1: मैं कुछ भी नहीं करती, बस घर में रहती हूँ।
0: कुछ नहीं करती, बस सिर्फ घर में? तो घर में कुछ नहीं करती?
1: घर का काम करती हूँ।
0: क्या क्या करती हो? बर्तन धोती हो, झाड़ू लगाती हो, पोछा लगाती हो, हैं? खाना बनाती हो?
1: जी।
0: सबसे ज्यादा अच्छा काम क्या लगता है
1: मुझे?
0: हाँ,
1: काम में?
0: हाँ हाँ,
1: मुझे झाड़ू लगाना पोछा।
0: झाड़ू लगाना? झाड़ू कौन से वाला, बांस वाला लगाती हो या वो जो पतले पतले दानों वाला होता है वो लगाती हो?
1: पतले वाले लगाती
0: है। बस सिर्फ झाड़ू लगाती है पूरे घर में से? और ऐसे करती हो कोई घर में गंद डाल रहा हो तो उसे कहती हो कि तुम गंद क्यों मचा रही हो, झाड़ू मैंने लगाना है, तुम्हें तो नहीं लगाना, कभी ऐसा बोलती हो?
1: हाँ, मैं अपनी भाई को बोलती हूँ, मैं इतनी थक गई, अभी तक मैं झाड़ू लगाया तो आपने गंद फेंका।
0: हाँ अच्छा,
1: वो मुझे कहते हैं कि आपका काम ही है ये।
0: कि दुआ का तो काम है झाड़ू लगाना और मेरा काम है गंद मचाना, है ना? ओके, तो अच्छा, तो बाकी आपने स्टडी क्या किया है?
1: तालीम के वाले?
0: हाँ तालीम। हाँ, तालीम क्या किया है?
1: मैंने 8 तक पढ़ा, उसके बाद में
0: 8 तक पढ़ा है? अरे वाह वाह वाह वाह, मतलब 8 जमातें पढ़ी हैं आपने?
1: हाँ, मैं अपनी बचपन की एक स्कूल के बारे में बात करना चाहती हूँ।
0: हाँ जरूर बताओ।
1: मैं जब स्कूल बचपन में जाया करती थी तो वहाँ पर ना मेरी जो टीचर थी वो मुझे हमेशा इनाम दिया करती थी, तो मेरी अम्मी भी मुझ पर इतना मतलब थे, वो कहती थी मेरी बेटी इतनी लायक है, देखो उनको इनाम दिया करते थे। तो जब हम लोगों ने हाउस चेंज की दूसरे हाउस में, तो वहाँ पर मैं अम्मी ने कहा मैं तुम्हारी एडमिशन दोबारा करती हूँ। तो अम्मी ने मुझे लेकर गए वहाँ पर, तो जो टीचर थी उनको बोला कि मेरी बेटी इतनी लायक है, आप इसको देखो, ऐसे ऐसे इतनी तारीफ है की मेरी। टीचर ने बोला अच्छा ये सच में इतनी लायक है? तो अम्मी ने बोला हाँ ये लायक है। तो उन्होंने कहा चल मैं इससे टेस्ट लेती हूँ कैसे लायक। मुझे कार्ड भी दिया और पेन भी दिया। मैं ना मेरे साथ एक बगल में एक बच्ची बैठी हुई थी, मैं उनसे पूछ रही थी बाहर यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर क्या आता है? वो कहती है कुछ भी नहीं आता। मैंने कहा नहीं मुझे आता है, लेकिन सुन थोड़ी सी बोल। कहते नहीं मुझे भी तो कुछ नहीं आता। मैंने कहा टीचर ने मुझसे काफी लिए नालायक से कुछ नहीं। मैंने तो बोले आपने इतनी तारीफ की इनकी, इनको तो कुछ भी नहीं आता। मैंने कहा नहीं नहीं ये बहुत लायक है, ये तो इनाम दिया करती थी। उन्होंने कहा नहीं इसको फ्री में बिठा दो। तो अम्मी ने कहा चलो ठीक है, मैं फ्री में अम्मी ने लेकर गई थ्री क्लास में। तो वहाँ पर टीचर ने बोला ये करो वो करो, मुझे वो भी नहीं आती थी। तो उन्होंने कहा तुम्हें जा रही थी तो मैं भाग गई स्कूल।
0: अच्छा।
1: जैसे मैं स्कूल से भाग गई, अम्मी वापस आई घर में, मेरा बुक बोला कि ये जो बच्ची है ना आपकी स्कूल में सिर्फ बच्चों को चुप करवाने करवा रही थी, तो इसलिए उसको इनाम दिया करते थे, वरना ये तो इतनी नालायक।
0: अच्छा, मतलब बच्चों को चुप कराने में इनाम मिलता था?
1: मुझे इससे इनाम दिया करता था क्योंकि मैं बच्चे बहुत अच्छी तरीके से चुप करवाती।
0: अच्छा, दुआ यू आर वेरी स्वीट, अल्लाह ताला आपके बख्त अच्छे करे, खुश रहो।
1: और इससे मुझे तो सही उर्दू नहीं आती, लेकिन फिर भी मैंने इतनी कोशिश की।
0: बहुत अच्छा बोली हो, बहुत अच्छा बोली हो। मैंने आपको आपको दुआ दी कि अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करे, और आप मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यू आर वेरी इनोसेंट, आप बड़ी मासूम है, ठीक है? ओके, ख्याल रखो अपना, खुश रहो, बाय बाय। हाय हाय हाय हाय हाय हाय। अच्छा कभी कभार ना जब कभी मेरी ऐसे कॉलर से बात होती है ना कि जो बहुत इनोसेंट होते हैं, बहुत मासूम होते हैं, तो मुझे ना बड़ा अच्छा भी लगता है और मैं सोचता हूँ कि अल्लाह के कैसे कैसे रंग हैं। हर हर इंसान का एक अपना ज़िंदगी में एक एक्सपोजर है, उसके अपने इर्द गिर्द बहुत सारे तजुर्बात हैं। हर इंसान अपनी अपनी ज़िंदगी में कुछ अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें फेस कर रहा होता है या देख रहा होता है। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ हैं, कुछ गम हैं, और हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ रंग हैं, और वो रंग बहुत खूबसूरत हैं। और ये जितने रंग हैं, इन रंगों को रब ताला बरकरार रखे और अच्छे वाले बरकरार रखे। होपफुली जी कि आज के प्रोग्राम आपने इन्जॉय किया होगा, और मैंने भी बहुत इन्जॉय किया आपके साथ। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, जिन लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं, जिन लोगों ने मुझे कॉल्स किए हैं, आप सभी का बहुत शुक्रिया। फेसबुक पे रिमी आगा मेरे साथ रहे, आपका शुक्रिया जी। और रिमी आगा मुझे कहते हैं कि मेरी बेटी को जो है वो आप हैप्पी बर्थडे कह दें, आयमा नाम है उसका, तो आयमा आपको हैप्पी बर्थडे। रब ताला करे कि आपका आने वाला साल आपके लिए खुशियाँ लेकर आए। साइम तबस्सुम मेरे साथ रहे जी, और वो कहते हैं माशाल्लाह भाईजान बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आपका अंदाज़ बहुत प्यारा है, अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो, अल्लाह आपसे भी राज़ी हो जी। और कहते हैं हमेशा खुश रहें। और मैं आपको पेरिस फ्रांस से सुन रहा हूँ, और आपको और आपकी पूरी टीम को मोहब्बत और बरा सलाम और दुआ दे रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जी साइम तबस्सुम साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आप दियार गैर से हमें सुन रहे हैं और इतनी मोहब्बत आप देते हैं। बहुत शुक्रिया सभी लोगों का जनाब, जो लोग मेरे साथ शामिल हाल रहे, जिन लोगों ने प्रोग्राम सुना। और मुझे आरजे के भी कहते हैं जी, हर फ्राइडे की नाइट को मेरा आपके साथ प्रोग्राम होता है 12 से लेकर 2 बजे तक। मुझे प्रोग्राम आप कोई सजेशन देना चाहते हैं प्रोग्राम के अंदर, सो डू लेट मी नो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, kb.baigbeg लिखेंगे, मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा। आपने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर इनबॉक्स करना है, कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई टॉपिक बताना चाहते हैं जिसके हवाले से हम बात करें, और जिस हवाले से बात हमें नहीं करनी चाहिए, तो वो अगर कोई बात आप मुझे बताना चाहते हैं, सो डू लेट मी नो। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जी, निश्चित बहुत अच्छी रही। केबी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह के हवाले, अल्लाह के सुपुर्द, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही घर सांसों ने वफा की, तो आपके साथ मुलाकात होगी अगले जुमे को एक दफ़ा फिर। तब तक के लिए दीजिए केबी को इजाज़त, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।

अगर वो निकाले गए तो ये उनके साथ नहीं निकलेंगे, और अगर उनसे जंग हुई तो उनकी मदद नहीं करेंगे, और अगर मदद करेंगे तो पीठ फेर कर भाग जाएंगे, फिर उनको कहीं से भी मदद न मिलेगी।

ये सब जमा होकर भी तुमसे बिल मवाजह नहीं लड़ सकेंगे, मगर बस्तियों के कलों में पनाह लेकर या दीवारों की ओट में मस्तूर होकर उनका आपस में बड़ा रोब है। तुम शायद ख्याल करते हो कि ये इकट्ठे और एक जान हैं, मगर उनके दिल फटे हुए हैं, ये इसलिए कि ये बेअक्ल लोग हैं।